मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 50 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: राजकुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि

वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब मन श्रद्धा प्रेम और भक्ति से भर जाता है तब हर ओर ईश्वर का सौंदर्य दिखाई देने लगता है। संतों ने भी कहा है कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल आंखों से नहीं बल्कि निर्मल हृदय से होता है। उनकी झलक मनमोहक होती है, उनके दर्शन से आत्मा आलोकित हो उठती है। जो प्रेम और विश्वास से उन्हें पुकारता है उसके जीवन में शांति और आनंद की वर्षा होती है। अर्थात ईश्वर हमारे भीतर और चारों ओर विद्यमान है, आवश्यकता केवल उन्हें अनुभव करने की है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही।

मैली चादर मानव जीवन और मन की उन कमियों, भूलों और दोषों का प्रतीक है जो संसार में रहते हुए हमसे हो जाते हैं। भक्त ईश्वर से कहता है कि आप तो निर्मल और पवित्र हैं, मैं अपनी कमियों के साथ आपके सामने कैसे आऊं। इस भजन का संदेश है कि ईश्वर के समक्ष अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता, पश्चाताप और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा अर्पण है। जब मनुष्य अपनी त्रुटियों को पहचानकर ईश्वर की शरण में जाता है, तब ईश्वर उसे स्वीकार कर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं।

जगत जननी अर्थात माँ शक्ति को सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि माता की कृपा से मन में साहस, विवेक, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी सरल प्रतीत होने

0: की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मीराबाई की भक्ति भारतीय भक्ति परंपरा का एक अनुपम उदाहरण है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना और जीवन भर उनकी प्रेममयी भक्ति में लीन रही। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति, मित्र, स्वामी और जीवन का आधार माना। राजमहल के वैभव और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर भक्ति का मार्ग अपनाया। अनेक विरोधों और कठिनाइयों के बावजूद कृष्ण भक्ति से कभी विचलित नहीं हुई। उनके पद और भजन आज भी भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये पंक्ति उनके पूर्ण समर्पण और एकनिष्ठ भक्ति को दर्शाती है।

0: जी हाँ श्रोताओं, भक्ति का सार बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास में है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
1: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर एक दूसरे से आगे निकलने की हो।

0: अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट। हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें है बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड। लीजिए आगे क्रॉसिंग और अब सिग्नल भी हो गया है रेड, तो अब वक्त है रुकने का लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो अब हम लेते हैं ब्रेक।
1: तो श्रोताओं आपके लिए था ये संदेश, ट्रैफिक नियमों यानी यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से, इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अथर्ववेद से पाठ।
2: ओम सत्य बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मजज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथ्वी न कृणोतु। सत्यवृद्धि न्याय व्यवहार क्षात्र तेज दक्षता तपस्या ज्ञान और यज्ञ ये 8 गुण पृथ्वी अर्थात मातृभूमि को धारण करते हैं। वह मातृभूमि पृथ्वी हमारे लिए भूत भविष्य वर्तमान अवस्था की पालन करने वाली है, वह हमारे लिए विस्तृत स्थान निर्मित करे। ओम अस

अध्याराम नाह। जिस मातृभूमि के मानवों के अंदर उच्चता नीचता तथा समता के विषय में बहुत ही निर्वैरता है और जो नाना प्रकार के वीर्यों से युक्त औषधियों को धारण पोषण करती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी कीर्ति की साधन होवे। ओम यस्याम समुद्र उतवा सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्ट यस्संभवू यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्सानो भूमि पूर्वपेये दधातु। जिसमें समुद्र नदियां तथा अनेक जलाशय हैं, जहां कृषक कृषि से अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न करते हैं, जिस पर अनेक प्राणी आनंद पूर्वक जीवन धारण करते हैं, वह मातृभूमि हमको अनेक प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करे। ओम यस्याश्चतस्र प्रदिश प्रदिव्या यस्यामन्नम गृष्ट यस्संभवूव या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत्सानो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। जिस मातृभूमि की चारों दिशाओं में विविध खेतियां हैं, जिसमें अन्न को उत्पन्न करती हैं और उसमें जो भूमि घूमने वाले प्राणी मात्र को बहुत प्रकार से पुष्ट करती हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें गायों से दूध और कृषि से अन्न प्रदान करे। ओम यस्याम पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्याम देवा असुरा नव्यवर्तयन्ने गवामश्वानाम वयसश्चविष्टा भगंवरज पृथ्वी नो ददातु। जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध कर्तव्य किए थे और जिसमें देवों ने असुरों को पराजित किया था तथा जो गायों अश्वों तथा पक्षियों का विशेष निवास स्थान है, वह मातृभूमि हमारे ऐश्वर्य तथा तेज को प्रदान करे। ओम विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यभक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरम विव्रति भूमिरग्निमिंद्र ऋषभद्रविणे नो ददातु। सबको पोषण करने वाली रत्नों की खान, सबका आधार जिसके अंदर सुवर्ण है, प्राणियों का निवास कराने वाली, सब मनुष्य रूप अग्नि का धारण पोषण करने वाली और इंद्र से जिस पर वृष्टि होती है, ऐसी मातृभूमि हमें धन धान्य के बीच में रखे। ओम याम रक्षन्त्य स्वपना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथ्वीम अप्रमादम सानो मधुप्रियं दुहामतो उक्षतु वर्चसा। सब कुछ देने वाली जिस विस्तृत मातृभूमि की रक्षा आलस्य प्रमाद रहित ज्ञानी शूरवीर देव सदृश जन करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें मीठे मीठे पदार्थ प्रदान करे तथा तेज और बल को बढ़ावे। ओम यार्णवे धि सलिलमग्रासी दियाम

0: यस्या हृदयं वरमेभ्यो मंसति येनावृतमृतं पृथिव्याः सा नो भूमिस्तुषं बलं राष्ट्रे दधातु उद्यमे। प्रारंभ में जो समुद्र में जल के ऊपर थी, बुद्धिमान जन बुद्धि और कुशलता आदि से जिसकी सेवा करते आए हैं, जिस पृथ्वी का हृदय आकाश में सत्य से आवृत होने से अमृत रूप है, वह हमारी मातृभूमि हमारे राष्ट्र में तेज और बल पराक्रम की अभिवृद्धि करे।
1: गौरव ग्रंथों से इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना अथर्ववेद से पाठ। यह है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस पखवाड़े के कृषि कार्य। इस विषय पर डॉक्टर भास्कर शुक्ल से कुंवर तेज भानु सिंह की बातचीत, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार किसान भैया, इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर भास्कर शुक्ला जी, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि के जानकार हैं, और यह पखवाड़े में कृषि के कार्य का कीन जाए, कैसे कीन जाए, ओकरे बारे में विस्तृत जानकारी हमका डॉक्टर साहब दही। तो डॉक्टर साहब ये बतावें कि गर्मी के महीना में खेत के तैयारी करे खातिर हमार किसान कौन कौन बात के ध्यान रखें।
2: देखिए, ये जो समय है, जून का महीना चल रहा है, इस पखवाड़े में किसान भाई गर्मी की जुताई, जैसा कि पहले से भी किसान भाई करते आए हैं कुछ किसान भाई, कि गर्मी की जुताई और गहरी जुताई अगर किसान भाई कर लेते हैं इस समय, तो कई प्रकार के कीट और व्याधि जो फफूंद होती हैं मृदा में नीचे की तरफ, वो गहरी जुताई से ऊपर आ जाती हैं। और चूंकि इस समय तापक्रम बहुत ज़्यादा होता है और वो ऊपर आ जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप से कुछ कीट और फफूंद जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और अगली फसल के लिए आपका खेत जो है वो काफ़ी हद तक संरक्षित हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, इस समय तो मृदा परीक्षण के भी अगर कोनो समय हो ही ना, तो कैसे किसान भाई का करें, कहाँ जाएं?
2: देखिए, मृदा परीक्षण, किसान भाई इसकी महत्वा को समझ रहे हैं कि यदि एक मैं यहाँ पे एक छोटी सी कहावत भी बताना चाहूँगा कि सुबीजे सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। अगर अच्छा बीज अच्छी मृदा में जाएगा तो बहुत अधिक गुणवत्ता युक्त पैदावार देगा। इसके लिए किसान भाई स्टेट, जो यहाँ के राज्य जो मृदा परीक्षण की प्रयोगशालाएं हैं, उसमें संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा परीक्षण होते हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। और 15 सेंटीमीटर गहरी स्लैंट, थोड़ा सा तिरछा काटते हुए 4-5 स्थान से खेतों का, जहाँ का नमूना लेना है उसकी मृदा ले लें, और उसको आपस में मिला के दो भाग अलग करें, फिर दो भाग, चार भाग करके दो भाग फिर मिलाएं, फिर ऐसे करते करते उस प्रक्रिया को जब आधा किलो तक 500 ग्राम मिट्टी बच जाए तो उसको खेत का नंबर और वो डाल के जो भी पहचान है और वो प्रयोगशाला में दे दें। तो जो गौण तत्व हैं उसकी भी कराएं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म तत्व की जांच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब एक ही फसल चक्र चलता है, जैसे धान गेहूं का, तो वहाँ पर सूक्ष्म तत्वों के अभाव ज़्यादा आता है। और प्रत्येक तीसरे साल, बता हर 3 साल में एक बार मृदा परीक्षण किसान भाई अवश्य करा लें। अच्छा। और ये समय उसके लिए उपयुक्त समय होता है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आप दी हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बात बतावें, ये समय तो अब धान की खेती के एकदम समय हो गया है, किसान भाई लोग बेहन लगा चुका है और कुछ लोग लगावत हैं ना भाई, तो किसान भाई का बात के ध्यान रखें ताकि उनके पौध जो ना है, मतलब बेहन बढ़िया से तैयार होए, और इतनी गर्मी में का चीज़ की सावधानी बरतें?
2: देखिए, ये सही बात है कि खरीफ की फसल है और तापक्रम उसमें रहता है और नमी भी बनाए रखना है। पौध बहुत नाजुक होती है, छोटे बच्चे की तरह। इस समय पौध में सबसे बड़ी चीज़ है कि जो धान की पौध है उसमें नमी पर्याप्त बनाए रखें किसान भाई। और दो तरीके का खतरा रहता है, एक तो जो पहले लग चुकी है, जिसको आज 15 से 20 दिन

0: हो गया है, उसमें कहीं कहीं खैरा रोग की शिकायत भी दिखाई पड़ने लगती है। उसके लक्षण ये हैं कि वहाँ पर हरी न होके पत्तियाँ जैसे कत्थई रंग की, या किसी ने पान खाकर उसमें थूक दिया, तो इस तरीके का लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं शुरुआती दौर से ही। अच्छा। तो वहाँ पर किसान भाई 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके जिंक सल्फेट, जो कि 10 वर्ग मीटर के लिए उत्तम, 1 लीटर पानी 5 ग्राम जिंक सल्फेट पर्याप्त होता है, उसका छिड़काव कर दें। दूसरा क्या है कि पीथियम स्पीसीज एक फफूंद होता है जो इसमें पौध गलन आने लग जाती है, तो किसान भाई यदि देखें पौध पीली पड़ के गल रही है तो वहाँ पर थायोफेनेट मिथाइल नामक अंतरप्रवाही फफूंदी नाशी आता है, उसकी 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो इस रोग से भी निजात मिल जाएगी, किसान बच सकता है। इसके अलावा कभी कभी जब बहुत तापक्रम बढ़ता है तो ऊपर की फुनगी जलती है, तो यहाँ तक कहा गया है कि हमारी सिफारिश है ये कि आप एक टाइम जो नैपसेक स्प्रेयर होता है, जो छिड़काव वाली मशीन, उसमें करके सूरज ढलने के बाद एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार उस पर पानी का फुहारा भी मार सकते हैं,
1: छिड़काव कर दें। बहुत बढ़िया जानकारी दें डॉक्टर साहब, ऐसे हमारे किसान भाई तो बहुत लाभ ले ही। डॉक्टर साहब ये बात बतावा, जैसे मक्का के बुवाई के भी सीजन है, तो मान ले किसान भाई का करें, कौन बीज के प्रयोग करें? इस समय संकर प्रजाति के बीज के बड़ा प्रचलन हो गया है, ओके बारे में तनी बतावें, और ये कौने बीज में प्रोटीन के मात्रा ज़्यादा पावा जाते, एक तनी के आप बतावें तो किसान भाई ओके लाभ ले सकें।
0: देखें 25 जून तक मक्के की बुआई हो जानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि HQPM, जैसा आपने अभी बताया कि मक्के में तो सब में प्रोटीन होता है,
1: हाँ।
0: लेकिन हाई क्वालिटी प्रोटीन में जिसका नाम ही है HQPM1, इस ये संकर प्रजाति है, किसान भाई इसको अपनाएं, इसको बोएं, या शक्तिमान वन उसको लगाएं। संकुल में अगर संकुल ही लगाना चाहते हैं तो उसमें तरुण, नवीन, श्वेता, कंचन, ये काफ़ी अच्छी प्रजातियाँ हैं, इसको जी, किसान भाई लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि मक्का जो संकर प्रजातियां उनका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जो संकुल प्रजातियां हैं उनका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई करें किसान भाई।
1: तो डॉक्टर साहब अरहर के बुवाई के भी बारे में आप थोड़ा बताएं किसान भाई के, कि अभी हो समय अरहर के जो बुवाई का समय आएगा है।
0: अरहर एक महत्वपूर्ण दलहन फसल है और अब इस महीने में उसकी बुवाई हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो उन्नतशील प्रजाति हैं अरहर की, जो उकटा अवरोधी हैं, क्योंकि अरहर में क्या होता है उकटा की समस्या आ जाती है, फ्यूजेरियम विल्ट, तो उसको बचाने के लिए तो उपास 120 जो कि शीघ्र पकने वाली भी है, इसके अलावा नरेंद्र अरहर 1 बहार, ये वो प्रजातियां हैं जो उकटा अवरोधी भी हैं और इनकी पैदावार अच्छी है। किसान भाई 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से डालें और 75x20 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जैव उर्वरक राइजोबियम, जो कि अरहर का आता है, हर दलहन का अलग अलग है।
1: अच्छा।
0: तो राइजोबियम कल्चर अरहर से इसको उपचारित करना ना भूलें। 200 ग्राम राइजोबियम अरहर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है, थोड़ा गुड़ के पानी से उसको मिला लें और उसको फिर बीजों में लगा के 20 मिनट तक छायादार स्थान पर रखें, तत्पश्चात बुआई करें किसान भाई लाइन।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ना के खेती अगर जौन किसान करें चाहें तो वो ओके लिए का उपाय है?
0: गन्ना इस समय फसल खेत में है और गन्ने में इस समय नमी बनाए रखना तो एक महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही मिट्टी, हल्की मिट्टी चढ़ाने, गुड़ाई करके हल्की मिट्टी चढ़ाने का भी जून का माह यह पखवाड़ा बहुत उपयुक्त है और बहुत आवश्यक है। तो किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि गन्ने की फसल जो अभी है उसमें इन बातों का ध्यान रखें। और इसी अवस्था में इस महीने में तना भेदक कीट का भी कहीं प्रभाव होता है तो उसमें पूरा का पूरा पेड़ जो है सूखना शुरू हो जाता है पीला पड़ के, तो उसके लिए लैम्डासाई हेलोथ्रीन 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में आपसे एक और सवाल हम कह ली कि चारे के अगर इस समय सीजन है चारे के फसल के, तो किसान भाइयों के थोड़ा सा चलते चलते जो उन्हें बता दें ताकि

0: ओहू के लाभ उनका
1: चारा
0: मिल सके।
1: इस माह में चारा बहुत जरूरी है मवेशियों के लिए, हरे चारे के लिए। ये इस महीने में किसान भाई ज्वार लोबिया लगा सकते हैं, लेकिन चरी की बहु कटाई वाली जो फसल है उसकी मैं सिफारिश करूंगा कि किसान भाई उसको जरूर लगाएं। वो मल्टी कटिंग क्रॉप है और इसकी बुआई का उपयुक्त समय है और बाजार में इसका बीज उपलब्ध है।
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दें आप, एक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

इस पखवाड़े के कृषि कार्य इस विषय पर डॉक्टर भास्कर शुक्ल से कुंवर तेज भानु की बातचीत अभी आपने सुनी। कार्यक्रम था कृषि जगत, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए।

0: इस पखवाड़े के कृषि कार्य इस विषय पर डॉक्टर भास्कर शुक्ल से कुंवर तेज भानु की बातचीत अभी आपने सुनी। कार्यक्रम था कृषि जगत, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज सुनवा रहे हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल की वार्ता, स्वैच्छिक रक्तदान जरूरी।
1: स्वैच्छिक रक्तदान जरूरी क्यों? ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि साहब रक्तदान ही क्यों दें? रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता है। कभी भी किसी इमरजेंसी में जब भी देखें ब्लड बैंक में आदमी ब्लड देना नहीं चाहता। ब्लड क्यों नहीं देना चाहता? साहब हम कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, मेरा खून निकल जाएगा। ये एक जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने जब ब्लड बैंक यहाँ पर शुरू हुआ था इलाहाबाद में, मॉडर्न ब्लड बैंक, तो क्या होता था, प्रोफेशनल डोनर ब्लीड करते थे, जो रोज़ खून बचते थे उनका हीमोग्लोबिन 2 ग्राम होता था, वो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित होते थे, उनको HIV पॉजिटिव होता था, यानी उनको एड्स की बीमारियां भी होती थी, और ये बीमारियां ब्लड देने के साथ साथ दूसरे मरीजों को भी पहुंच जाती थी। इन सब को कंट्रोल करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान बहुत ज़रूरी है। स्वैच्छिक रक्तदान का और भी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स नहीं होते हैं, उस समय मरीज को ब्लड कहाँ से है, मरीज की जान कैसे बचे। पेशेंट कैंसर के होते हैं, पेशेंट ल्यूकीमिया के होते हैं, पेशेंट एक प्लास्टिक एनीमिया के होते हैं, प्लेसेंट इस तरीके के थैलेसीमिया के होते हैं, इन सब पेशेंट्स को ब्लड चाहिए होता है। इनके अटेंडेंट्स रोज़ ब्लड दे देते हैं कि ख़त्म हो जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को अगर स्वैच्छिक रक्तदान नहीं होगा तो इनको ब्लड कहाँ से मिलेगा? हम सबको सोचना पड़ेगा, स्वैच्छिक रक्तदान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों ने एक नारा दिया था कि हम लोग अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट कर सकते हैं अपने देश को। हम अपने बर्थडे पर सबसे अच्छा गिफ्ट यही कर सकते हैं कि पास के किसी भी ब्लड बैंक में जाएं और स्वैच्छिक रक्तदान दें। स्वैच्छिक रक्तदान देने से आपके एक खून से 3 पेशेंट्स की जान बच सकती है। आपके खून से एक तो टोटल पैक सेल दिया जाएगा जो कि किसी भी एनीमिया पेशेंट में या ब्लीडिंग पेशेंट्स में काम आएगा, दूसरा आपके प्लेटलेट्स निकाले जाएंगे, और तीसरा प्लाज्मा। ये तीनों अवयव ही काम आते हैं। कभी कभी आप देखिए किसी Factor D या किसी Factor 9 के डिफिशेंसी के पेशेंट्स होते हैं, या जिनको कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सबको ये प्लाज्मा या क्रायोप्रेसिपिटेट कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ब्लड कहीं से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, आज भी ब्लड का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ब्लड केवल आदमियों में ही बन सकता है। अतः हमारी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना होती है कि स्वैच्छिक रक्तदान ज़रूर करें। आप अपना बर्थडे पर निशान लगा के रखें और उस दिन पास के किसी भी ब्लड बैंक में जाएं और स्वैच्छिक रक्तदान करें। रक्तदान हर 3 महीने पर कर सकते हैं, वैसे तो 6 हफ्ते में आपका रक्त पूरा हो जाएगा शरीर में, लेकिन फिर भी एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है कि 3 महीने पर आप दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। आप रक्तदान करके एक बहुत बड़ा दान करेंगे, स्वैच्छिक रक्तदान इसीलिए रखा गया है। सरकार ने ये सोच रखा है कि इस 2020 तक हम 90% स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा ही रक्त प्राप्तकर्ताओं को रक्तदान दें, यही हम सब आपसे उम्मीद करते हैं।
0: स्वैच्छिक रक्तदान जरूरी क्यों, इस विषय पर अभी आपने सुनी डॉक्टर अशोक अग्रवाल की वार्ता।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 6:30 पर सुनिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य एडवेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 7:10 से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर पंडित रविशंकर का पखावज वादन। सुबह 8:45 पर कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनना न भूलिएगा। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा विश्व रक्तदाता दिवस पर। फिल्म संगीत सुनिएगा सुबह 9 बजे 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर उमा बनर्जी से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमाधुरी में सुबह 10:05 पर। कलाकार होंगे हरविंद कुमार यादव, वत्सला मनोहर देवधर और दोपहर 2:30 पर वीना रानी श्रीवास्तव, राजा राम यादव और सूर्य प्रकाश पटेल। दिन में 11:15 पर बच्चे सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल संघ।

7 बजे अपने फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो अनुरोध सुनिएगा। प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे नीता श्रीवास्तव की वार्ता, सौर मंडल की आकर्षक घटनाएं। और युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

पार्वती की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार काकभुशुंडी ने सविस्तार वो कथा कही जो मैंने तुम्हें सुनाई।

अनुराधा पौड़वाल के स्वर में अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। आज सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सुबह फिल्म से भजन, लता मंगेशकर के स्वर में। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के ने संगीतबद्ध किया है।

और अब ये भजन हम आपको सुनवा रहे हैं जय माँ वैष्णो देवी फिल्म से। अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर को सुनिए, नक्श लियालपुरी की शब्द रचना, अमर उत्पल का संगीत।

अभी आपने सुना फिल्मों से भजन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
1: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना।

0: और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री KP मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत निष्पक्षता के साथ ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन, राग है भोपाली तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना पंडित जितेंद्र अभिषेकी का ख्याल गायन राग था भूपाली तोड़ी और आपके साथ तबले पर संगत की थी सुभाष कामंत ने। और अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य।

0: priyaghar.gov.in.
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

0: खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश, नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in

0: मैखो के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। और ख्वातीन के ICC G20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैखों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहाँ वो स्लोवाक क्यादत के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीग्रेस्को में मुनक्किदा एक कम्युनिटी इस्तकबालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों के साथ नीस में पैलेस देस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा जहां तकरीबन 120 स्टार्टअप्स आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैखों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। यह इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक व तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक्किद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक इन मुलाकातों में इक्तिसादी तरक्की, सप्लाई चेन्स, मस्नूई जहानत, सरमायाकारी में इश्तराक और आलमी सलामती से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तबादला ख्याल मुतवक्के है।

0: सदर ट्रंप बुध के रोज वजीर आजम मोदी के साथ एक दोतरफा मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो एक जोहराने में शिरकत करेंगे। इस जोहराने में G7 मुल्कों के रहनुमा, शराकतदार और टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स भी शरीक होंगे। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसे जदीद मस्नूई हीटिंग निज़ाम को तैयार करने के लिए एटमी तवानाई के महकमे के साथ इश्तराक किया है, जो चांद की सतह पर उतरने वाले खलाई जहाज को चांद के बेहद ठंडे मौसम से महफूज रख सके। बेंगलुरु में CSIR राइस कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए इसरो के सरबराह ने बताया कि शमसी तवानाई वाले चंद्रयान 3 मिशन का खलाई जहाज विक्रम चांद पर महज 14 दिन ही काम कर पाया। इसरो अब एटमी तवानाई के महकमे के साथ एक ऐसे खलाई जहाज को तैयार करने के लिए काम करेगा जो 200 दिन तक चांद की सतह पर काम कर सकेगा। पिछले 12 वर्षों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम उन इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो मोदी सरकार ने शहरियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं।
1: इस्लाहात के 12 साल, एतबाद के 12 साल बन चुके हैं। चाहे वो GST हो, फेसलेस टैक्स का निज़ाम हो या डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि वो मुल्क की तामीर में शरीक हैं। मरकजी बजट 2025-26 में आमदनी टैक्स स्लैब्स और टैक्स की शरहों में जामे तब्दीलियां की गई हैं ताकि तमाम टैक्स दहिंदगान को फ़ायदा पहुँच सके। नए टैक्स निज़ाम के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है। 88% टैक्स दहिंदगान को आमदनी 12 लाख रुपए तक है और वो बराह रास्त फवायद हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद माली साल 2022 में 6,90,00,000 से बढ़कर माली साल 2025 में 9,20,00,000 हो गई है। अगले सिलसिले के GST निज़ाम ने टैक्स के अमल को मजीद आसान बना दिया है और शहरियों के रहन सहन को सहल बनाया है। टैक्स का ढांचा अब बुनियादी तौर पर 5% और 18% के स्लैब्स पर मुश्तमिल है, जिसके नतीजे में टैक्स दहिंदगान की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। इस साल अप्रैल में GST की वसूली 2.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो अब तक की आला तरीन सतह है। आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात मुल्क के सबसे अहम पॉलिसी फैसलों में से एक है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इस टेक्नोलॉजी को सियासत और पॉलिसी साजी दोनों शो में मुअसर तरीके से इस्तेमाल किया है। 5G खिदमत सिर्फ 22 महीने में मुल्क के 99.6% अजला तक पहुंच चुकी हैं। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97.07% कमी आई है, जिससे इंटरनेट ज़्यादा सस्ता और काबिल रसाई हो गया है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज शिमाल मशरकी भारत के मुख्तलिफ इलाकों अंडमान और निकोबार जजायर, केरला, माही, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के मजीद कुछ इलाकों और जनूबी छत्तीसगढ़ के बाज हिस्सों में पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। मुवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में महकमाए डाक की जानिब से ड्रोन पर मबनी मेल ट्रांसमिशन खिदमात के आगाज का ऐलान किया है। मजकूरा खिदमात मंडी के सदर पोस्ट दफ्तर और रिहारधर शाख के पोस्ट दफ्तर के बीच शुरू की गई हैं। इस पहल का आगाज मरकजी वजीर के ग्रामीण डाक सेवकों और डाक असिस्टेंटों के साथ तबादलाए ख्याल के दौरान मौसूल हुए फीडबैक के तनाजुर में किया गया है। इस मीटिंग के दौरान दूरदराज के इलाकों में ज्यादा तेज और मुअस्सर कनेक्टिविटी की जरूरत को उजागर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा

0: है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजवजा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के ज्वाइंट कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी ज़रूरतमंद को सेहतयाब करने और एक ख़ानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएँ, ज़िम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासिरा पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजबेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई कुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। मुआहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमाए मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जुनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुरमुस को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही बोलो।

0: में हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार।

0: माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र और आज 15 मिनट इस कार्यक्रम में आप हैं कार्यक्रम प्रस्तोत्री मोना पांडे के साथ। श्रोताओं, रक्त का कोई कारखाना नहीं होता और इसे केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है। जरा सोचिए, यदि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति, प्रसव के दौरान किसी मां, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे या किसी गंभीर रोगी को समय पर रक्त ना मिले तो क्या हो? ऐसे अनगिनत लोगों के जीवन की डोर उन अनाम रक्तदाताओं से जुड़ी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपना रक्त देकर किसी को नया जीवन देते हैं। श्रोताओं, इसी भावनाओं को सम्मान देने और सुरक्षित रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यानी आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस। आइए आज के नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम में जानते हैं रक्तदान का महत्व, इससे जुड़ी सावधानियां और कुछ ऐसे तथ्य जो आपको भी रक्तदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर वर्ष 2004 से विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। 14 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। उन्होंने रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप्स ए बी ए बी और ओ की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करना।

श्रोताओं, भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में प्रतिदिन लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त की जरूरत पड़ती है सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बड़ी शल्य चिकित्सा के दौरान, कैंसर रोगियों को, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चों को, प्रसव के समय माताओं को। और महत्वपूर्ण बात तो ये है श्रोताओं कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, क्योंकि ये कहीं मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। मानव शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें ये रक्त प्राप्त होता है। इसे केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकता है। और अब सवाल उठता है कि क्या रक्तदान सुरक्षित है, तो हम इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वायदे के मुताबिक कर लेते हैं एक गाने

श्रोताओं, अगर हौसला बुलंद हो और किसी के लिए कुछ करने का दृढ़ जज्बा हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। रक्तदान ज़रूर करें। और म्यूज़िकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने ये पूछा था कि क्या रक्तदान सुरक्षित है, तो बता देते हैं आपको। जी हाँ, बिल्कुल। एक सामान्य रक्तदान में लगभग 350 से 450 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, जो शरीर की कुल रक्त मात्रा का छोटा सा हिस्सा होता है। मानव शरीर कुछ ही दिनों में प्लाज्मा की भरपाई कर देता है और कुछ सप्ताह में रक्त कोशिकाएं भी पुनः बन जाती हैं। रक्तदान से कमजोरी आना या स्थायी नुकसान होना जैसी धारणाएं वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है, यदि रक्तदान निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए। श्रोताओं, 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। वजन कम से कम 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक ज़रूर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का स्तर निर्धारित सीमा में हो, व्यक्ति स्वस्थ हो, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। रक्तदान से पहले स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक जांच करते हैं ताकि दाता और प्राप्तकर्ता दोनों ही सुरक्षित रहें, और ये बहुत ही आवश्यक है। श्रोताओं, आइए अब आपसे साझा करते हैं रक्तदान से पहले और बाद की सावधानियों के बारे में। रक्तदान से पहले भरपूर नींद लेनी चाहिए, हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, खाली पेट रक्तदान बिल्कुल ना करें। रक्तदान के बाद कुछ देर विश्राम करें, अधिक पानी और तरल पदार्थ लें। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें कि जिस दिन आपने रक्तदान किया हो उसी दिन अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचें। यदि चक्कर या असुविधा महसूस हो तो स्वास्थ्य कर्मी से तुरंत संपर्क करें। श्रोताओं, जब हम रक्तदान करते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारा रक्त किस व्यक्ति के जीवन को बचाएगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है।

दान बहुत से होते हैं जग में, पर रक्तदान सबसे महान दान है। अपने अंश से जीवन देना, यही तो है सच्चा सम्मान। रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है श्रोताओं, बल्कि मानवीयता की सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के काम आ सकता है, क्योंकि रक्त के विभिन्न घटक जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाएं अलग अलग रोगियों को दिए जा सकते हैं। आज देश को अधिक से अधिक स्वैच्छिक और नियमित रक्तदाताओं की आवश्यकता है। यदि आप रक्तदान करने के योग्य हैं, तो किसी अधिकृत रक्त बैंक या रक्तदान शिविर में जाकर जानकारी जरूर प्राप्त करें श्रोताओं। और आपका एक छोटा सा निर्णय किसी परिवार की उम्मीद, किसी माँ की मुस्कान और किसी बच्चे का भविष्य बचा सकता है। क्योंकि जिंदगी अनमोल होती है।

श्रोताओं, विश्व रक्तदाता दिवस हमें याद दिलाता है कि इंसानियत को सबसे सुंदर रंग जो है वो लाल ही रंग देता है, वही लाल रंग जो हमारी नसों में बहता है और किसी दूसरे के जीवन में नई रोशनी ला सकता है।

0: तो आइए श्रोताओं, संकल्प लें कि रक्तदान करेंगे और जीवन बचाएंगे, स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य बनाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं मोना पांडे आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम प्रस्तुति थी सुंदरम तिवारी की। और हाँ, कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिक्रिया लिखना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। फिर मिलेंगे कार्यक्रम के अगले अंक में कल इसी वक्त।
1: You're different. You know, सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो? Really listen.
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। थोड़ी देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख?
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे?
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
9: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
10: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अभी आपने सुना था जन्नत फिल्म का गाना, सईद कादरी और प्रीतम की आवाज़ें, केके की आवाज़ें आवाज़ थी, सईद कादरी ने लिखा था और प्रीतम का संगीत था। दूसरा आदमी फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरूह की शब्द रचना, राजेश रोशन का संगीत।

दूसरा आदमी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
1: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहाँ पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहाँ पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर 1 रैंक 1 OPI, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले CDS भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे CDS भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थ्रेटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अम्युनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से वह है।
0: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खास तौर पे और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं, पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है, रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था, सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं?
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 50% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात में 16

0: गुने का जंप देख रहे हैं, तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
2: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर्स है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर एचएल के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हो, इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया, कल्याणी के 155 के आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के है। इसी में अम्निशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उसे, जिससे अम्निशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही,
1: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
2: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम उसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है। जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भी हमें भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सेटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इजराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
2: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है कि रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
4: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।
5: हम आकाश

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनिए देश गान।

अभी आपने सुना देशगान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत आज उर्दू कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर चर्चा मोहम्मद उमेर से। इसके अलावा सुनेंगे चर्चा गर्मी में रखें हिफाजत मौजू पर, और आज के कलामे शायर में सुनेंगे मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारुख आदिल से उनका ताज़ा कलाम।

मैं चढ़ कर मसलहत के पर्वतों पर, मैं चढ़ कर मसलहत के पर्वतों पर, बखीलों को भी दानी लिख रहा हूँ। वरक महदूद हैं अर्जो समा के,

0: मोहब्बत की कहानी लिख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
1: सामाईन, अभी आप कलाम शायर के तहत महजूज हो रहे थे। शायर जनाब फारूक आदिल साहब के खूबसूरत कलाम से। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से मुत्तला ज़रूर करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें अपने तासुरात भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157। तो सामईन, इसी के साथ आज का ये उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर को दे इजाज़त। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं उमा बैनर्जी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में गीत और भजन।

अभी आपने सुना तुलसीदास रचित भजन उमा बैनर्जी के स्वर में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं शांति जैन का लिखा ये गीत। स्वर हैं उमा बैनर्जी के।

अभी आपने सुना सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार थी उमा बैनर्जी। आपने सुने इनके स्वर में भजन और गीत। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं, बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस सिलेंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं लगातार। और अब समय हो चला है श्रोताओं लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी को सुनने का। हमारे आज के कलाकार, उनके नाम बता दें हम आपको, हरविंद कुमार यादव और साथी और वत्सला मनोहर देवधर। तो सबसे पहले सुनते हैं हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत।

हरविंद कुमार और यादव और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना था देवी गीत, और अब लीजिए सुनिए इनके स्वर में दादरा।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। अभी आपने सुने हरविंद कुमार यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत और दादरा, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वत्सला मनोहर देवधर के स्वर में देवी गीत, झूमर और विकास गीत। पहले सुनते हैं देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कलाकार थे हरविंद कुमार यादव और साथी और वत्सला मनोहर देवधर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम में लहू के दो रंग। इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, येसुदास की आवाज़ है, फारूक कैसर की शब्द रचना है, बप्पी लाहिरी का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म तोहफा में आशा भोसले और किशोर कुमार को। इंदिवर ने लिखा है इस गीत को और बप्पी लाहिरी ने संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। फिल्म का नाम रामलखन।

सच्चे का बोलबाला इस फिल्म का गाना भी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में। अमित खन्ना ने गीत रचना की थी, बप्पी लाहिरी का संगीत था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौकर बीवी का, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, अनजान की शब्द रचना, बप्पी लाहिरी का संगीत।

अभी आपने सुना अरमान फिल्म का गाना, उषा उत्थुप और साथियों की आवाज़ें थीं, इंदिवर की शब्द रचना, बप्पी लाहिरी का संगीत, और लीजिए अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर, आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है अनजान ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने के बाद कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साहिब से। बप्पी लाहिरी और एस जानकी के स्वर हैं। गीत लिखा है अनजान ने, बप्पी लाहिरी का संगीत।

साहिब फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अभी जारी रहेंगे। अगली उद्घोषणा के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों
1: जय हिंद।
0: मैं हूँ रितंद्रा दीदी
2: और मैं शारदा दीदी। आज हम बात करेंगे उन हरे भरे साथियों की जो न केवल हमारे घर की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि हमारे जीवन में ताजगी, स्वास्थ्य और सारा सकारात्मक ऊर्जा भी भर देते हैं।
0: और शारदा दीदी कहा भी गया है कि पेड़ पौधे मुस्कान हैं धरती की, इनसे ही पहचान है धरती की, यानी हरियाली की दीप जलाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम प्रकृति के दूर होते जा रहे हैं तो ऐसे में घर में छोटे छोटे पौधे हमें प्रकृति के करीब लाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी, मनी प्लांट, एलोवेरा, स्नेक प्लांट जैसे पौधों की जो सुंदरता है ना, वो बहुत सुंदर लगती है अगर घर में हम उसको लगाएं तो, और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध बनाने में मदद करते हैं।
2: बिल्कुल दीदी, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि

0: इन्हें लगाने के लिए आपको बड़े बागीचों की ज़रूरत नहीं, एक छोटे बालकनी, छत या खिड़की का कोना भी हरियाली से भर सकता है। तो बच्चों, गमलों में जब पौधे खिलते हैं, मन के सुने भी कोने मिलते हैं, है ना? और हर पत्ती संदेश सुनाती है, प्रकृति जीवन राह दिखाती है, यानी पौधे केवल सजावट नहीं बल्कि जीवन के शिक्षा जीवन को शिक्षा भी देती है कि वे हमें धैर्य, सेवा और निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं।
1: बिल्कुल। तो बच्चों, अगर हम परिवार में या घर घर में एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें तो हमारा घर, हमारा शहर, हमारा देश और हमारा पर्यावरण कहीं अधिक सुंदर और स्वस्थ बन सकता है। इसीलिए बच्चों कहते हैं ना कि आज एक एक व्यक्ति मिलकर प्रण ये ले ले कि धरती को फिर से हरा करें, एक नहीं दो पौधे रोपें, जीवन में खुशियां भर लें, सुंदर दिखेगा घर आंगन हमारा, जीवन होगा स्वस्थ हमारा। तो आज ही जो है अपने घर में ऐसी हम प्रेरणा लें और अपने घर के किसी कोने को हरियाली को स्थान दीजिए। पौधों को केवल सजावट नहीं परिवार का सदस्य मानिए,
0: क्योंकि जहां हरियाली होती है वहीं खुशहाली भी होती है। एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा उपहार बन सकता है। तो आओ सजाएं अपना घर हरे भरे पौधों से, महक उठे जीवन प्रकृति के रंगों से।
1: और बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे जो आपके ये प्रयास भी हैं ना, वो बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे पेड़ लगाना या जल की बचत करना, आप लोग अक्सर पानी गिराते हो ना, तो वो नहीं करना है। प्लास्टिक का उपयोग कम करना और स्वच्छता बनाए रखना। याद रहे बच्चों, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, अब हमारी बारी है कि हम उसका संरक्षण करें और संकल्प लें कि हरा भरा हो देश हमारा, स्वच्छ रहे घर संसार और पर्यावरण की रक्षा करके मनाएं सुंदर भविष्य अपार।
0: अब पर्यावरण की रक्षा केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और एक स्वच्छ, स्वस्थ तथा हरित घर और भारत के निर्माण में योगदान दें।
1: बिल्कुल
0: दीदी।
1: लेकिन बच्चों, बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की जो कटाई है और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां बन गई है। आप सभी पढ़ते भी होंगे समाचार पत्रों में भी और देखते भी होंगे समाचार में ना, न्यूज़ समाचार देखते हो ना, तो इसका देखो प्रभाव जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और असंतुलित मौसम के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाएंगे।
0: बिल्कुल, तभी तो कहते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन पाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, हरियाली का दीप जलाकर स्वच्छ भविष्य आज बनाओ।
1: तो शारदा दीदी, ये तो हमारा आज विषय था चर्चा का, लेकिन आज हमारे स्टूडियो हरा भरा नहीं लग रहा आपको? दिख रहा है
0: दीदी, और आज रही हूँ कि सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे
1: और बहुत सारे अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जो हम लोग चर्चा कर रहे थे पौधों की, तो वो छोटे छोटे पौधे हमारे बीच में हैं, तो उनका हम परिचय कराएं। उससे पहले जो है बच्चों के लिए जो है एक आज का जो शब्द है ज्ञान है, वो शब्द ज्ञान आप बता दें। शब्द ज्ञान क्या है?
0: हाँ, शब्द ज्ञान है दीदी, आज हम लाए हैं शब्द ज्ञान में विभावरी और ऑब्सलीट। विभावरी रात यानी रात्रि, यह एक संस्कृत का तत्सम शब्द है जिसका उपयोग हमेशा संस्कृत और हिंदी साहित्य काव्य में किया जाता है। और ऑब्सलीट यानी OBSOLETE, ऑब्सलीट यानी अप्रचलित, प्रयोग की दृष्टि से पुराना पड़ चुकी।
1: तो बच्चों, ये थे शब्द ज्ञान और अब हम परिचय करते हैं। हमारे बीच में देखिए एक हरे भरे टी शर्ट में बैठे हुए हैं, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम श्रेयांश है।
1: क्या करते हैं, पढ़ते हैं?
2: हाँ, मैं पढ़ता
1: हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
1: अच्छा, तो श्रेयांश, आज जो हमारे नन्हे साथी सुन रहे हैं या जो बैठे हैं, उनको क्या सुनाने जा रहे हैं?
2: मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ।
1: कौन सी कविता है?
2: तितली रानी।
1: सुनाइए।
2: तितली रानी, इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो? क्या तुम कोई हो शहजादी या परी लोक से आई हो? फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वह तुमको कैसे लगते हैं जो तोड़ इन्हें ले जाते हैं?
1: बहुत

0: बड़ा ही सुंदर और एकदम नेचर से जुड़ा हुआ कविता श्रेयांश ने सुनाया है। और उसके बाद हमारे उसी के बगल में एक नन्ही परी भी बैठी है। तो आपका क्या नाम है बेटा?
1: मेरा नाम इधिका है।
0: अच्छा, तो आप क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो?
1: मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको?
1: मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है।
0: अच्छा, सिंगिंग करते हो आप? अच्छा, तो आज कविता में हमें क्या सुनाओगे?
1: मैं सीखो कविता सुनाऊंगी।
0: सुनाओ।
1: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लोको मल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धन्यवाद।
0: अरे वाह भाई, इनके लिए एक तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सीख देने वाली रचना इन्होंने पढ़ी। और देखिए दीदी, शारदा दीदी इसी बीच में एक और परी हम लोग के बीच में बैठी हैं। आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम अनुष्का है।
3: अनुष्का
0: बहुत प्यारा नाम है। तो अनुष्का, आज अपने जो नन्हे साथी जो हमारे रेडियो के करीब हैं, सुन रहे हैं या जो बैठे हैं स्टूडियो में, उनको क्या सुनाने जा रही है?
2: मैं रोचक विज्ञान तथ्य बताने वाली हूँ।
0: सुनाइए।
2: मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन होते हैं जो संदेश का आदान प्रदान करते हैं। हमारा हृदय दिन में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। पृथ्वी ही हमारे सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। गर्म पानी कई परिस्थितियों में ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जम जाता है। जिराफ की गर्दन में भी उतनी ही हड्डियाँ होती हैं जितनी मनुष्य की गर्दन में होती हैं, सिर्फ 7। शार्क मछलियाँ डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर मौजूद थीं। एक बड़ा पेड़ 1 वर्ष में इतनी ऑक्सीजन दे सकता है कि कई लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। मानव आँख लगभग 1 करोड़ आँखों रंगों में अंतर पहचान सकती है। ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन उसमें से अधिकतर खारा पानी है। टूटता हुआ तारा वास्तव में तारा नहीं होता, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाला छोटा पत्थर या धूल का कण होता है। सूर्य इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 3,00,000 पृथ्वियां समा सकती हैं। डॉल्फिन एक आँख खुली रखकर भी सो सकती है। चींटी अपने शरीर के वजन से लगभग 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है।
0: अरे वाह भाई, बहुत अच्छी जानकारी दी अनुष्का ने। और अनुष्का, आप आगे क्या बनना चाहते हो?
2: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
0: अरे वाह, इसीलिए विज्ञान में इनकी रुचि भी है। और दीदी, हमारे पास भी खेल खेल में विज्ञान है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में एक नन्ही साथी और भी बैठी है, उनका परिचय हो जाए। तो अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम प्रिशा है।
0: तो प्रिशा, आप आज स्टूडियो में आई, कैसा लग रहा है आपको?
4: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है, तो क्या करती हैं आप, पहले ही अपना परिचय बताइए।
4: मैं
0: पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं?
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ।
0: 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। और मैं जब आई स्टूडियो में शारदा दी, तो ये कुछ गुनगुना रही थी।
3: अच्छा।
0: मुझे लगा कि ये कुछ संगीत वगैरह भी सीखती है ना, तो आज कुछ तैयार करके आई हम?
4: हाँ, मैं तैयार करके आई हूँ।
0: क्या सुनाएंगी?
4: मैं राग एक सुनाने वाली हूँ।
0: सुनाइए।

0: सुंदर भाई।
1: अब भाई इन्होंने तो बहुत ही सुंदर राग गाया और इन्हीं के बगल में ही एक हमारे नन्हे साथी और भी बैठे हैं, तो आपका क्या नाम है?
2: मैं मेरा नाम कुमार विश्वरत्न सिंह है।
1: अरे वाह, आवाज़ तो इनकी बहुत बढ़िया लग रही है। और आप लगता है गायकी करते हैं ना?
2: यस मैम।
1: सीखते हैं?
2: यस मैम।
1: अच्छा, तो ये बताइए पहले अपना परिचय दीजिए कुछ, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ।
1: और उसके साथ गायकी भी करते हैं?
2: यस।
1: तो आप क्या सोचा है भविष्य में कि गायकी के लाइन में जाएंगे या कुछ और भी बनना चाहेंगे?
0: कुछ और भी करने
1: कुछ
0: की इच्छा
1: करना है कि गायकी ही अपना करियर बनाएंगे?
2: गायकी अपना करियर बनाऊंगा।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। और कुमार विश्वरतन सिंह से हम लोग आज आपको सुनाएंगे?
2: यस मैम।
1: अच्छा सुनाएंगे। इनके बगल में एक भैया और भी बैठे हैं ढोलक पे, तबले पे हैं मुकुल जी, और हारमोनियम पर है संतोष कुमार पांडे जी। सभी का यहाँ स्वागत है। और आप क्या गाएंगे इस समय?
2: मैं राग भैरवी गाऊंगा।
1: तो राग भैरवी गाइए।

0: बहुत बढ़िया भाई,
1: बहुत, बहुत
0: सब भाई सब बच्चों ताली बजाओ, क्योंकि इतना भैया ने इतना बढ़िया पढ़ा है ना, है ना। और अब जो है हमारे बीच में अभी जो एक सुंदर सी गायकी प्रस्तुत की थी प्रिंशा ने, वो पढ़ें। उससे पहले जो हमारे रेडियो सेट पे जो हमारे नन्हे मुन्ने साथी जुड़े हैं, उनके लिए भी हमारी जो शारदा दीदी हैं लेके आई हैं खेल खेल में विज्ञान। तो शारदा दी क्या बताएंगी बच्चों को?
2: दीदी देखिए छुट्टियां चल रही है बच्चों की, है ना, तो ऐसे में घर में कुछ वैज्ञानिक प्रयोग क्यों ना किया जाए, है ना। तो आज हम लाए हैं कि घर में टॉर्च की मदद से बनाना इंद्रधनुष। तो पानी से भरे, इसके लिए सामान ले लीजिए, कुछ सामग्री जैसे कि पानी से भरे एक गिलास और टॉर्च की मदद से इस पर आप इंद्रधनुष की रंग बना लेंगे।
0: अच्छा, वो कैसे?
2: पानी से भरे गिलास टॉर्च की मदद से इस पे इंद्रधनुष बना लेंगे। पहले एक कांच का गिलास लें भरा हुआ, साफ पानी से पूरा भरा हो। एक टॉर्च लें या मोबाइल से जो उसका फ्लैश लाइट है उससे भी काम चल जाएगा।
0: तो बच्चों सुनिए ध्यान से कि दीदी कैसे बता रही हैं, तो आराम से प्रयोग करिएगा।
2: एक सफ़ेद कागज या कार्डबोर्ड लें और इसको बनाने की विधि ये कि सबसे पहले आप जिस कमरे में इसका प्रयोग कर रहे हैं उसके उस कमरे की लाइट ऑफ कर दें ताकि वहाँ अंधेरा हो जाए और परछाइयाँ रोशनी ना इधर उधर फैले। अब कागज़ के सफ़ेद कागज पर एक फर्श या टेबल पर कागज़ को बिछा लेते हैं।
0: अच्छा।
2: उसके बाद एक ग्लास पानी लेंगे जिसे कि कागज़ के एक कोने पर रख दें। अब टॉर्च के सहायता से उस पर ग्लास के एक किनारे से लाइट डालते हैं, रोशनी डालेंगे और उसे देखेंगे कि जो आपका जो सफ़ेद कागज है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर नीचे थोड़ा लाइट को जब हम करते हैं तो देखते हैं कि कागज पर सात रंग यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, एक खूबसूरत पट्टी सी दिखाई देती है जो इंद्रधनुष का पूरे रंग हमें सामने दिखता है।
0: तो बच्चों दीदी ने जो तरीका या प्रयोग किए हैं बताए हैं, तो आप जो है अपने घर में जरूर प्रयोग करिएगा, घर में इंद्रधनुष जरूर बनाइएगा, है ना। और अब इसी के साथ दूसरा भी एक प्रयोग दीदी बताएंगी, आलू से और बिजली और उसकी जो एलईडी बल्ब होती है उससे हम कैसे कैसे प्रयोग करते हैं?
2: आलू खुद बिजली पैदा नहीं करता बल्कि एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करता है जो तांबे के सिक्के और जस्ता के कील के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया करा करके इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है। और आलू से बनी ये बैटरी एक छोटी सी एलईडी को आसानी से जला सकती है। यदि आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि आलू दो या तीन ताजे आलू हों, जिंक जस्ता इलेक्ट्रोड जस्ते के कील, कॉपर तांबा इलेक्ट्रोड तांबे के सिक्के या तांबे के स्ट्रिप्स ले लें। और कनेक्शन के लिए चिमटी वाले छोटे इंसुलेटेड तार, एलईडी एक छोटी कम वोल्ट का ले जिसमें कि 1.5 वोल्ट या तो 2 वोल्ट का हो। अब कीले की मतलब हर आलू के अंदर एक जस्ते की कील इस तरह से चुभाएं कि आलू के बीच तक मतलब जाए वो पूरी तरह से आर पार ना हो,
0: उसी के अंदर वो घुसा दे, चुभो दे।
2: और सिक्के लगाएं पर आलू में कील से थोड़ी दूर पर एक तांबे का सिक्का या तांबे की स्ट्रिप अंदर डालें, कनेक्शन करें, उसके लिए श्रृंखला बनाएं। एक तार की मदद से पहले आलू के तांबे के सिक्के को दूसरे आलू के जस्ते के कील से जोड़ें। फिर अब पहले आलू की बनी हुई कील को और अंतिम आलू के बचे हुए तांबे के सिक्के को एलईडी के दोनों टर्मिनल यानी तारों से जोड़ें। जैसे ही आप सही तार एलईडी से जोड़ेंगे रासायनिक प्रक्रिया के कारण बिजली बनेगी और एलईडी जल उठेगा। बच्चों कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि एलईडी अगर नहीं जलती है तो आलू की संख्या बढ़ा लें, जैसे एक आलू का तार दूसरे की कील से जोड़ेंगे। और बच्चों

0: सुनिश्चित करें कि कील और तांबे के सिक्के की मतलब कि एक दूसरे से कुछ छुए नहीं।
1: अच्छा हाँ। तो बच्चों शारदा दीदी ने जो प्रयोग बताए, तो जो विज्ञान की सीख रखते हैं या जो प्रयोग करते हैं तो आप उनको ज़रूर अमल में लाएं और सीखें, लेकिन सावधानी से सीखिएगा। तो शारदा दीदी भाई, ये तो थी खेल खेल में विज्ञान की जानकारी, और अब हम फिर से बच्चों की तरफ मुड़ते हैं। तो प्रिशा, हमें क्या सुनाने जा रही हैं आप?
2: मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ।
1: सुनाइए।

0: वाह भाई, बहुत सुंदर बजाया,
1: थैंक यू,
0: गायकी थी और तबला और म्यूजियम के साथ जो
1: संगत
0: बहुत अच्छी है। और मैं थोड़ी सी बातचीत भी करना चाहूंगी, शारदा दीदी आपको भी कुछ पूछना हो तो
2: हाँ दीदी
0: पूछ सकती हैं।
2: एक हमारे बीच में एक नन्ही परी जैसी बच्ची और बैठी है,
0: वो पर है, हाँ, लेकिन प्रिशा मैं अभी तुमने गाई तो मैं पूछना चाहती हूँ कि रियाज करते हो घर पे?
3: हाँ करती हूँ।
0: कैसे, मतलब स्कूल भी जाते होगे तो कोई टाइमिंग सेट किया होगा सुबह शाम में, कब करते हो, सुबह में कि शाम में?
3: शाम में।
0: शाम में करते हो, और कितने घंटे सीखने जाते हो अपना टाइम निकाल के?
3: मैं एक घंटा।
0: एक घंटा, तो बाकी टाइमिंग में अपने मेरे ख्याल से होमवर्क करते होगे, जो स्कूल का काम मिलता होगा वो करते होगे। क्या अच्छा लगता है, विषय क्या अच्छा लगता है तुमको सबसे अच्छा?
3: मुझे
2: पढ़ने में क्या पसंद है?
3: पढ़ने में
2: हिंदी, इंग्लिश।
3: मुझे इंग्लिश पसंद है।
0: इंग्लिश पसंद है। और इसके साथ ही तुम क्या बनना चाहते हो?
3: मुझे अभी तो पता नहीं, बट लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
0: डॉक्टर ही? अच्छा, लड़कियों की जो च्वाइस होती है वो
2: जन सेवा करना,
0: वो डॉक्टर की ही पहले होती है। तो हमारे बीच में शारदा दीदी वो एक जो है
2: छोटी सी बच्ची
0: जी भी बैठी है, और अभी हमको बताएं कि एक कविता और भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम आगे की का गीत सुनाए, उससे पहले उनकी कविता सुन ली जाए। सुनाओ बेटा, कौन सी कविता सुनाओगी?
4: मैं चींटी कविता सुनाऊंगी।
0: सुनाओ।
4: हर पल चलती जाती चींटी श्रम का

0: सुनाती चींटी, कड़ी धूप प्या हो वर्षा, दाना चुन कर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यह सिखाती चींटी। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, इन्होंने जो पहले भी कविता बहुत सुंदर सुनाई थी और ये भी कविता बहुत अच्छी थी। तो अब देखिए फिर दीदी बारी है, कुमार विश्वरतन सिंह खुद ही बढ़ गए हैं कि हमें एक गीत और गाना है, क्या सुनाएंगे?
2: बाल गीत
1: सुनाओ।

0: बहुत बढ़िया,
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया।
0: तो शारदा दी भाई, बच्चों ने गीत तो सुंदर सुनाए, किसी ने जानकारी दी, किसी ने सुंदर कविता पढ़ी, और जो हमारे सेट के सुन रहे हैं, सेट पे जो बच्चे, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई घूमने गया है, कोई नानी के घर गया है, कोई दादी के घर गया है ना, और कोई कुछ क्रिएटिव वर्क सीख रहा है जो नहीं गया है शहर के ही अंदर। तो ये सारी गतिविधियाँ, ये चूंकि छुट्टी का भी माहौल है और होमवर्क भी बच्चों को खूब मिला होगा, वो भी कर रहे होंगे, है ना।
1: बच्चों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, ये जो बच्चों को सुन रहे हैं ये बच्चे, मैं उन सब बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों अपना समय बहुत कीमती है ना दीदी। देखिए ये जो बच्चे, हमारे नन्हे बच्चे हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, ये अपने समय का कितना सदुपयोग करते हैं और कितने अच्छे, मतलब इनके अंदर आर्ट है, एक भावना है कि जिसको ये बढ़ रहे हैं, जिसको ये कर रहे हैं, है ना दीदी। और बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि स्कूल तो जाते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन वो अपना समय अधिकतर कर इधर उधर खेलना, तो चलिए अच्छी बात है खेल लिया, पर मोबाइल में या टीवी में वेस्ट करना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है।
0: शारदा दीदी, हम लोग बताते रहते हैं, चाहे नन्ही दुनिया प्रोग्राम हो चाहे बाल संघ में, बच्चों को सीख भी देते हैं कि अपने लिए जो अच्छा है वो करिए, मोबाइल से उतनी ही चीज़ें सीखिए जो आपके लिए लाभकारी हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि
1: जब गेम में या तो कुछ रील देखना, कुछ इसमें जो बच्चों आप अपना समय गंवा

0: उस समय का सदुपयोग करो। और देखो ये बच्चे आपके सामने एक प्रेरणा है कि हाँ ये अपने समय का सदुपयोग करके आज आपको इतना अच्छा गीत संगीत कविता सुना
1: और मैं तो शारदा दी कहूंगी कि जो बच्चे आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं इनसे प्रेरणा लीजिए और बहुत सारे आप भी यहाँ पे आ सकते हैं इस स्टूडियो में, अपनी प्रतिभा आप अपनी यहाँ दिखा सकते हैं, अपने अपनी जो भी आपके पास हुनर है उसके माध्यम से। तो आप ज़रूर आइए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए हमारे आकाशवाणी में, आपका भी स्वागत है। क्योंकि बच्चों की रुचि होती है, कभी कभी संपर्क नहीं समझ में आता कि अगर उनकी कविता है तो एक प्लेटफॉर्म एक मंच नहीं मिल पाता, तो वो आकाशवाणी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो बच्चों अगर आप लिखते हैं तो लाके हमारे यहाँ दिखाइए, बाल संघ प्रोग्राम में आप की कविताएं भी जो है पढ़वाई जाएगी। और अगर संगीत
0: साथ ही साथ हम अपने नन्हे साथियों अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चों अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखे, उस पर जरूर अपना संदेश दें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8004926256

0: कविताएं भी जो है पढ़वाई जाएगी, और
1: और
0: अगर
1: दीदी,
0: संगीत था
1: साथ ही साथ हम अपने नन्हे साथियों, अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि बच्चों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखें, उस पर जरूर अपना संदेश दें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8004926250। नंबर एक बार फिर, 8004926250।
0: बिल्कुल। तो ये शारदा दीदी ने जो नंबर बताया है, इसलिए कि आप अगर रुचि रखते हैं तो आकाशवाणी के माध्यम से जरूर अपनी प्रस्तुति या दिखा सकते हैं।
1: और हमारा
0: हाँ
1: कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिख
0: बिल्कुल।
1: दीजिए,
0: और
1: है ना
0: शारदा दी,
1: दीदी?
0: देखिए अभी हमारे पास टाइम भी है, बच्चे भी हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो समय है, इस समय गर्मी का बहुत माहौल चल रहा है, तो जो बच्चे हैं वो अपने को थोड़ा सा संभालें, माता पिता भी थोड़ा सा बच्चों की केयरिंग करें, क्योंकि धूप बहुत तेज है, तो उसमें बहुत ठंडा पानी ना पिए, बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: दीदी,
0: वो है, बाहर निकले तो
1: हाँ। और
0: कोशिश करें
1: बच्चे
0: कॉटन के कपड़े
1: बिल्कुल,
0: पहन के निकले, ढक लें, शरीर को ढक के निकले,
1: और धूप
0: है
1: में तो
0: ना।
1: जाने की बिल्कुल भी जिद ना करें। शाम को भी दीदी थोड़ी गर्मी रहती है, 5 बजे तक देखिए धूप और गर्म हवाएं रहती हैं, तो ऐसे में बच्चे पर दीदी थोड़ा कार्यक्रम का मूड चेंज करते हैं। और चलिए सुनवाती एक गीत।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान।

मैं ऊपर वो नीचे वो आगे मैं पीछे मैं पेड़ से वो पीछे अरे बचाओ मैं डाल डाल वो पान पान मैं पसीना वो दाल दाल मैं सुर में वो ताल में ये जंगल पाताल में बचाओ बचाओ अरे भागो रे भागो।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक पे हाथ से गिर गई।

0: तो बच्चों कैसा लगा गीत? अच्छा
1: भाई,
0: लगा?
1: बहुत सुंदर गाना था, है ना?
0: तुम लोग से पूछ रहे जो तुम लोग बैठे स्टूडियो में, बताओ तो
1: आप
0: भाई।
1: लोगों को अच्छा लगा?
2: यस मैम।
0: तो भाई शारदा दीदी, अभी जब ये गीत हो रहा था तो जो कुमार विश्वरतन जी हैं वो एक बहुत ही सुंदर रचना गुनगुना रहे थे। तो
1: अच्छा,
0: अभी चूंकि टाइम भी है तो क्यों ना उनकी एक रचना सुन ली जाए, क्योंकि वैसा माहौल हो, अगर सोचिए स्टूडियो के बाहर ऐसा माहौल हो जाए तो क्या कहना, है ना?

0: बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। कुमार विश्वरतन सिंह ने इतना सुंदर रचना गाई और इनके साथ जो है तबले पर मुकुल संगत कर रहे थे और संतोष कुमार पांडे जी हारमोनियम पे थे और भी बच्चे बैठे थे यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और अपनी गायकी भी।
1: क्यों ना दीदी, एक छोटी सी कविता और एक छोटी सी डंडी बच्चे को।

0: अनुष्का से सुनते हैं।
1: हाँ तो अनुष्का क्या सुनाएंगी अभी भाई? अब
2: मैं कविता सुनाऊंगी।
1: सुनाओ।
2: बच्चे दिल के सच्चे सबको प्यारे लगते, हंसते मुस्कुराते बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते, दौड़ भाग उछल कूद करते बच्चे सबको प्यारे लगते, प्यारी बोली बोल कर सबको अपना बना लेते बच्चे, ना किसी से बैर रखते बच्चे सबके साथ घुल मिल जाते बच्चे, अपनी बात मनवानी हो तो रो देते बच्चे सबको प्यारे लगते, मासूम सी प्यारी शरारत करते बच्चे बच्चे दिल के सच्चे।
1: बहुत अच्छी कविता सुनाई भाई अनुष्का ने। और बच्चे वाकई अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं और भगवान के प्रिय होते हैं, है ना। और इसी के साथ देखिए बच्चों और शारदा दीदी, अपने समय जो है, अपना समय जो कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है, तो हम अपने इस कार्यक्रम में बच्चों से कहते हैं जय।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है।

0: ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी और काराईकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister said that prices of stents and knee implants have become affordable, and this has helped many people. Mr. Modi highlighted that medical education has become more accessible to people due more institutions and seats being available. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on this ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Mr. Gadkari said the government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also emphasized that India today leads several of the world's largest healthcare initiatives. In a social media post, Mr. Goyal highlighted how this transformation is rooted in a deeply compassionate thought that a medical emergency should never turn into a financial crisis for any family. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। शाम 6:30 से आप सुनेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य एडबेस्टन बर्मिंगम इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित रविशंकर उपाध्याय का पखावज वादन। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध का समय होगा दिन में 1:15 पर। लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। गायक कलाकार वीना रानी श्रीवास्तव, राजा राम यादव और साथी सूर्य प्रकाश पटेल और साथी। समय याद रखिएगा 2:30 पर। बाल गोपाल कार्यक्रम में शाम 5 बजे बच्चे सुनेंगे वार्ता सौर मंडल की आकर्षक घटनाएं। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। वैशाली जिनकी उम्र है 23 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये दिनांक 7 अप्रैल 2026 से पीपल गांव ट्रांसपोर्ट नगर प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें गोरेलाल से, जिनका मोबाइल नंबर है 6389925213। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 6389925213। सलमा जिनकी उम्र है 30 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग

0: सांवला, चेहरा सामान्य, इकहरा बदन है, दिनांक 3 अप्रैल 2026 से। नखास खोना शाहगंज प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें मोहम्मद शफीक से। इनका मोबाइल नंबर है 9026808372। नंबर एक बार फिर से आपको बताए देते हैं, 9026808372। सुनील, जिनकी उम्र है 42 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा बदन, ये दिनांक 15 अप्रैल 2026 से। कृष्णानगर कीटगंज प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें श्यामलाल गुप्ता से, जिनका मोबाइल नंबर है 7275259532। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 7275259532। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित रविशंकर उपाध्याय का 3 ताल में पखावज वादन।

0: अभी आपने सुना पंडित रविशंकर उपाध्याय का तीन ताल में पखावज वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज है 14 जून और आज के दिन को हम मनाते हैं स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में। ये दिन सिर्फ एक दिवस ही नहीं बल्कि मानवता का उत्सव है। जीवन देने की भावना का प्रतीक है आज का दिन। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि ये वो दान है जो किसी इंसान की जान बचा सकता है। रक्त का कोई विकल्प नहीं होता, केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है और एक मरीज को नया जीवन दे सकता है। इसलिए हम सबको रक्तदान के लिए आगे जरूर आना चाहिए। सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद से। गायक कलाकार मन्ना डे, गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे थे रक्तदान की, तो आज का दिन ये हमें संदेश देता है कि रक्त करें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं, मानवता को मजबूत बनाएं और समाज में जागरूकता फैलाएं रक्तदान करने के लिए। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा सा कदम किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर हम बात करें कि कौन रक्तदान कर सकता है, तो हम आपको बता दें कि जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो, वो स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। उनका वजन सामान्य होना चाहिए और स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। अगर हम डॉक्टरों की माने तो एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रोताओं, हम सब के लिए जो रक्तदान करता है उसके लिए भी लाभकारी होता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं, दिल की सेहत बेहतर रहती है और शरीर में आयरन संतुलित रहता है। इसलिए रक्तदान देने का ही नहीं बल्कि पाने का भी अनुभव है। बहरहाल, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म अंदाज से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीत रचना है हसरत जयपुरी की और इसे सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे स्वैच्छिक रक्तदान की। तो रक्तदान एक ऐसा दान है जो बिना खर्च के किसी को जीवन दे सकता है। जरा सोच कर देखिए, आपके एक छोटे से प्रयास से कोई जीवन की जंग जीत सकता है। आज के दिन कई जगहों पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप चलाए जाते हैं और जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए। इन शिविरों में भाग लेकर हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। रक्तदान श्रोताओं कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा सुंदर कार्य होता है।

श्रोताओं, स्वैच्छिक रक्तदान मानवता का सबसे बड़ा सुंदर कार्य है। ये वो दान है जो किसी के जीवन की डोर को टूटने से बचा सकता है। आइए हम सब भी संकल्प लें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं रक्तदान करूँगा और जीवन बचाऊँगा। इसी सकारात्मक संदेश के साथ हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, गर्मियों का मौसम हो और आम की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। फलों का राजा आम अपनी मिठास, स्वाद और सुगंध से हर दिल को जीत लेता है। स्वाद से भरपूर आम केवल लजीज ही नहीं बल्कि विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और ये सभी पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। श्रोताओं, आजकल जब भी हम मार्केट में कुछ लेने के लिए निकलते हैं तो आम से लदे ठेले बरबस ही हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तरह तरह के आम मार्केट में इस समय उपलब्ध हैं, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, चौसा आम, और हर आम की खुशबू और स्वाद अलग होता है। जब भी आप लेने जाते हैं तो इनकी खुशबू हमको अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेती है और हम बिना इसको लिए रह नहीं पाते। इसलिए आम का संतुलित मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं और इसकी खुशबू, इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं भरपूर तरीके से।

श्रोताओं, आम केवल एक फल ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का स्वाद है, गर्मियों की पहचान है और सेहत का साथी भी है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अधिक मात्रा में कुछ भी नुकसान कर सकता है, इसलिए संतुलित मात्रा में आम का सेवन करें। और इसी मीठे संदेश के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आम खाइए, सेहत बनाइए और जीवन में मिठास लाइए। और सुनिए ये गीत।

0: सरगम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 1 बजने को है, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मसाइल वजीर आला को सुनाए। लोगों में एतमाद पैदा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वे उनके मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाएं और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गाय की पनागाह में गाय की खिदमत भी की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान आज दोपहर बाद गोरखपुर महानगर हल्के में 926 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। वाजिर है कि वजीर आला ने कल अपने दौरे के पहले रोज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 319 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस दौरान वजीर आला ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम की क्यादत में यही नया हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा,
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग में शिरकत के लिए अयोध्या पहुंचे राम मंदिर की तामीर कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर की तामीर और एहतियात के स्कैंडल की तहकीकात से मुतालिक अहम मालूमात शेयर की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चंदा से मुतालिक मुबैना घोटाले की जांच की गई है। हुकूमत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर SIT तश्कील देकर मामले में अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक तहकीकाती टीम में 3 सीनियर और तजुर्बेकार अफसरान शामिल हैं। हुकूमत ने एक हफ्ते में इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन में हतमी रिपोर्ट तलब की है। SIT की सिफारिशात की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर इम्तिहानी एहलकारों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम का मकसद NTA इम्तिहानात की निगरानी और अमल को मजबूत बनाना और ऑफलाइन कलम और कागज पर मबनी इम्तिहानात के हमवार, महफूज और मियारी इनकाद को यकीनी करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क्यादत में मुल्क ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर चलते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिले ज़िक्र तरक्की की है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौके की मुनासिबत से एक खसूसी सीरीज़ नश्र कर रहा है। आज हम शहरियों की ज़िंदगियों में आसानी लाने के लिए हुकूमत की कोशिशों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं।
2: केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.5

0: 9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी बढ़ रहा है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।
1: भारतीय फिजाइया का AN-32 तैयारा कलासाम में गिरकर तबाह हो गया। यह हादसा जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर पेश आया। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर एयर चीफ खेमा राम कुमावत और अग्निवीर एयर चीफ दानिश आलम की इस हादसे में मौत हो गई। वाज़ह रहे कि तैयारा हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत के कंडेरा गांव के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह और अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के गांव सालपुर के बाशिंदे सर्जेंट जितेंद्र शर्मा शामिल थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज के जरिए आज मुनक़िद होने वाले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की मुतवक्का भीड़ को एडजस्ट करने के लिए वसी और खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों और दीगर मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफर फराहम करने के लिए अगर ज़रूरत हो तो इम्तिहान की खसूसी ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जौनपुर, इटावा और अमरोहा में भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान यह इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है। इम्तिहान को राजदारी और मुनसिफाना बनाए रखने के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी अहकाम दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक रियासत के मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम आज से रियासत के मशरकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो अनुरोध। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो, अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मकरान, जिला प्रयागराज से आपका जाना पहचाना सीमित होता प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैं।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल में इतनी हरकत की, कि सकंदे इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया।
0: तो प्रेमचंद जी, आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: परम माननीय मधु दीदी, मैं आपका वही जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने मथुरा से कॉल की है, तो भाई कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपके अनुरोध में सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है संगम
0: जी।
1: और गीत गाया है मोहम्मद रफी, मुकेश साहब और लता जी ने।
0: कौन सा
1: हर
0: गीत
1: दिल
0: है?
1: जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा।
0: दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। तो
1: जी जी बिल्कुल,
0: भाई
1: बहुत
0: आपकी
1: ही
0: इस
1: सुंदर
0: पसंद को
1: प्यार गीत।
0: पूरा करते हुए हम आपको सुनवाते हैं संगम फिल्म का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म है सच्चा झूठा और गीत के बोल हैं, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: जी जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना है।
1: जी जी,
0: और हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गाना। लीजिए सुनिए।
1: धन्यवाद।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
1: जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम फिल्म का नाम और गाने की बोल है, तो जल्दी जल्दी मुझको पुकारे।
0: तो चलिए आपकी पसंद के इस गाने को हम सुनवाएंगे। किसी का नाम तो नहीं लेना आपने?
1: मैम सबसे पहले तो आपको।
0: अच्छा, मैं भी सुनूंगी ये गाना। जी जी
1: और हमारे भाई बहन संदीप कुमार, मंदीर कुमार, सुशांत कुमार, पूजा
0: जी,
1: सभी सुनने वाले।
0: तो आपको सुनवाते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: मैं आनंद कुमार, हंडिया प्रयागराज से।
0: जी आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं क्रिस मूवी का सॉन्ग सुनना चाहता हूँ।
0: गाने के बोल बताइए।
1: आओ सुनाएं प्यार की एक कहानी।
0: जी जी, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन के ऊपर फिल्म, जी जी फिल्म आया हुआ ये गाना है। और आनंद जी, अपने बारे में भी कुछ बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैं बीएड कर चुका हूं और टीचर की तैयारी करता हूं।
0: अच्छा, टीचिंग लाइन में जाना है आपको?
1: जी मैम।
0: तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है?
1: ठीक ठाक चल रही है मैम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में कोई आपके विचार हों, कैसे लगते हैं आपको?
1: नहीं मैम, बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम हैं
1: मैम? हेलो फरमाइश है, हेलो अनुरोध है। जी मैम, जी मैम।
0: तो आइए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो अनुरोध, कार्यक्रम अपना नाम बता दीजिए। जी अहमद हुसैन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हाथ से सफाई का वादा कर ले साजना तेरे बिना मेरे रूप पे मेरे बस तू न रहे।
0: जी जरूर सुनवाएंगे अहमद हुसैन जी। किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: हाँ वो एक वो है सबरी बेगम है
0: जी,
1: और यूसुफ है उनकी अम्मी है, और क्या कहते तूफान सलीम, चार आदमी का।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी।
1: मेरा नाम नितेश आर्य है, प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: जी नितेश जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है सलमा पे दिल लग गया
0: जी।
1: गाने बोल मेरे पाँव में मेहंदी लगी है।
0: कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना है।
1: बहुत ही अच्छा गाना है और आपके कार्यक्रम भी बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप हमें फ़ोन भी करते रहते हैं। तो आपको आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: Bulletin the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. Seven people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एनसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है।

इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग।
श्रीलंका के कोलंबो में आज 5

0: 1000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
6: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
7: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं बीना रानी श्रीवास्तव के स्वर में देवी गीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीत। अब आपको सुनवाते हैं राजा राम यादव और साथियों के स्वर में पचरा।

सूर्य प्रकाश पटेल और साथियों के गाए इस कहरवा के साथ ही लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है, लेकिन FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: कन्हैया की बाल लीलान की बात करिए कि उनने बचपन में कैसो नटखटपन दिखायो। पर बहन श्रुति, हमें संगई एक बात ये ना भूलनी चाहिए कि ब्रजराज कृष्ण ने जितनी भी इन लीलान को मंचन करो, वो कितनी लीला ऐसी हैं कि कन्हैया ने वो जो हमारे जल के स्रोत हैं, जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, उनके किनारे इन पे करी।
1: देखो, जो ब्रज है ना, वो तो कुंड ताल सरोवरन की नगरी है, और यहाँ पे जल संचय याई लिए किए जा रहे हो, और याई लिए तरह तरह के पोखर और कुंड और तालाब बनाए गए, कुआं बावड़ी बनाए गए, ताकि वहां में जल संचय किया जा सके।
0: और बहन श्रुति, हमारे ब्रज को जो ये जल संचयन को स्वरूप है ना, या कु सबरे विश्व ने स्वीकारो भी है और या ते ना सीखो भी है।
1: कन्हैया ने वह समय पे जल के संचयन की बात सोची तो वो कितने दूरदर्शी हते।
0: पर ब्रज में देखो, अपन किया जो बम्बे को पानी बहवे है ना, बाकू कौन ना जाने। तो बहन श्रुति देखो, हमारी ब्रज वसुधा की इतनी विविधता है, इतनी बात है कि हम कितनी भी करते जाएं, कोई ओर छोड़ थोड़ी ना है। पर आप देख रही हो समय को संकेत, तो आप भी समझ रही होंगी। तो प्यारे भैया बहनाओं, इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोए अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती।

0: श्रुति शर्मा को
1: और मोए यानी श्रुति पुरी की देव अनुमति
0: नमस्कार
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: बीके तोमर।
2: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों के प्रिय कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं नबीहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे कार्यक्रम रेडियो किड्स में। और मेरे साथ है मेरे दोस्त
1: आयत
2: इसराज।
3: आज हम
1: सौर्य।
0: जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आप सबने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा?
1: मैंने राग बिलावल, राग भोपाली और राग भैरव बजाना सीखा और गाना सीखा।
0: अरे इसराज, तुमने तो गर्मियों की छुट्टियों में काफी गाने सीख लिए, एक बजाकर तो सुनाओ।
1: ठीक है, मैं सुनाता हूँ। तो अब मैं आपको वृंदावनी सारंग की बंदिश सुनाता हूँ।

0: अरहम और शौर्य, आप लोग इतने चुप क्यों हो? आप भी कुछ बोलो।
1: इस बार गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मैंने सोचा था कि इन छुट्टियों में सिर्फ खेलना और टीवी ही नहीं देखना है, बल्कि कुछ नया भी सीखना है। मेरी दादी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, उन्हीं की मदद से मैंने भी अपने घर के आंगन में कुछ नए पौधे लगाए हैं। मैं रोज उन्हें पानी देता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ। जब उन पौधों में नई पत्तियाँ निकली तो मुझे बहुत खुशी हुई। दादी कहती हैं कि इससे मैंने प्रकृति से प्रेम करना और पर्यावरण की रक्षा करना सीखा है।
0: शौर्य, आपने क्या सीखा?
2: मैंने जीव दिया, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना और काफी कुछ सीखा है।
0: चलो अब मैं बताती हूँ मैंने गर्मियों की छुट्टियों में क्या सीखा। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियाँ बस अब खत्म होने को ही है, 15 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे।

0: जाएंगे, मगर इस बार की छुट्टियां मेरे लिए बहुत खास रही क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ नई चीजें सीखी, जिनमें से सबसे स्पेशल है स्कूटी ड्राइव करना। साइकिल चलाना तो मैंने पिछले साल ही सीख लिया था, इन छुट्टियों में मैंने पापा से स्कूटी चलाना सीखा। इस कोशिश में मैं कई बार गिरते गिरते बची, लेकिन हर बार पापा ने मुझे चोट लगने से पहले ही संभाल लिया। काफी मेहनत के बावजूद मैं अभी तक अच्छी तरह स्कूटी चलाना नहीं सीख पाई हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं दोबारा कोशिश करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। नबीहा, आपने क्या सीखा?
1: इस बार की गर्मी की छुट्टियों में मैंने बहुत कुछ नया सीखा। मैंने ड्राइंग और कलरिंग की कोशिश की और अपने तरीके से सुंदर चित्र बनाए। मैंने डांस सीखना शुरू किया और रोज रोज प्रैक्टिस करके थोड़ा बेहतर भी हो गया। घर में मैंने मम्मी की मदद करना भी सीखा, जैसे छोटे मोटे काम करना और चीजें संभाल कर रखना। कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और खूब मस्ती भी करती थी। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, लेकिन बीच बीच में मन खेलने का ही हो जाता था। तो कुल मिलाकर मेरी छुट्टियां तो अभी सीखने, मस्ती और थोड़ी शरारत से भरी हुई हैं।
0: अरे वाह, आपकी छुट्टियां तो बड़ी मजेदार लग रही हैं।
2: मैं एक कविता सुनाऊं?
0: हाँ जरूर।
2: गर्मी की छुट्टियां आई, ढेरों खुशियां साथ मिलाई, बस्ता बोला अब आराम, हम बोले वाह श्रीमान, आम चूसे कुल्फी खाएं, ठंडी ठंडी लस्सी पाएं, सुबह खेले शाम को गाएं, मिलकर खूब धमाल मचाएं, दाई चुटकुले कहानियां सुनाएं, हंस हंस लोटपोट हो जाएं, नानी के घर जाना प्यारा लगता जैसे स्वर्ग हमारा, पार्क में खेलें दौड़ लगाएं, छुट्टियों में मजे उड़ाएं, मस्ती भी हो सीख भी आए, हर दिन नई खुशी दे जाए, गर्मी की छुट्टियां हैं न्यारी, लगती सबसे प्यारी प्यारी।
1: अरे वाह,

0: अरे वाह, आपने तो कितना अच्छा गाना सुनाया, धन्यवाद।
1: मैं अपनी एक चिड़िया की गीत वाली कविता सुनाऊं?
0: सुनाओ।
1: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला धूप सूखे सिंको से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकमा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिरकार मैं बड़ी हुई दूर दूर तक उड़ी पंख पसार, तब मेरे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। कैसी लगी?
0: वाह,
2: बहुत अच्छी,
3: बहुत अच्छी,
1: बहुत अच्छी।
0: क्या आपको पता है आज कौन सा दिन है?
1: हाँ,
4: रक्तदान दिवस।
1: हाँ, वो 14 जून को ही होता है।
0: हाँ,
1: आज तो वही तारीख है।
0: हाँ, आज तो 14 जून ही है। कोई उस पे कुछ बताना चाहेगा?
5: हाँ, मैं बताऊँ?
0: बताओ।
5: जैसा कि आप सभी ने बताया, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और अन्य स्वास्थ्य संगठनों द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदान दिवस की शुरुआत की गई थी। 14 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था। उन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
0: अरहम, क्या आप बताना चाहोगे रक्तदान के बारे में कुछ?
1: एक दिन राहुल अपने पिताजी के साथ अस्पताल गया। वहां उसने देखा कि एक मरीज को तुरंत रक्त की जरूरत थी। मरीज के परिवार वाले बहुत चिंतित थे। तभी कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से रक्तदान किया और मरीज का इलाज शुरू हो गया। ये देखकर राहुल ने अपने पिताजी से पूछा, क्या रक्तदान करने से किसी की जान बच सकती है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, रक्तदान एक महान कार्य है। एक व्यक्ति का रक्त कई लोगों के जीवन में आशा की किरण बन सकता है। उस दिन राहुल ने समझा कि रक्तदान केवल एक दान नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उसने फैसला किया कि बड़ा होकर वो भी रक्तदान करेगा और लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रक्तदान महादान है। ये किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
0: अरे वाह, आपने तो काफी कुछ बता दिया हमें। चलो, मेरे पास एक कविता है रक्तदान पर, क्या मैं सुनाऊं?
1: हाँ जरूर।
0: रक्तदान है सबसे न्यारा, इससे बचता जीवन प्यारा। जीवन पर जब संकट आता, रक्तदान ही काम में आता। एक दान अनेक मुस्कान, यही है रक्तदान की पहचान। नहीं खरीद सकते हम प्राण, पर दे सकते जीवन दान। मानवता का यही संदेश, मदद करें हम ये विशेष। आओ मिल कर ले ये ठान, करेंगे हम भी रक्तदान। जब हो जाए किसी भी योग्य, जरूर निभाएं ये कर्तव्य।

0: रक्तदान का करे सम्मान, सच में है ये महादान। इस दिन रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। रक्तदान से दुर्घटना पीड़ितों, मरीजों और जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। सुरक्षित रक्त की उपलब्धता के लिए नियमित रक्तदान आवश्यक है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा इसराज, तुमने तो हमें बताया था कि तुमने गाना भी सीखा है, जरा एक गाना तो सुनाओ।
0: जी जरूर, अब मैं आपको एक मोटिवेशनल गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है नामु छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो।

0: वैसे क्या सबको पता है कि रक्तदान दिवस 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने पहली बार मनाया था।
1: हमें तो पता ही नहीं था।
2: अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं। क्या मैं पूछूं?
1: जी जरूर।
2: अच्छा, अभी जब मैं रेडियो आ रही थी तब मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स लगी थी और उन्हें देखते ही सभी लोग रुक गए। तो मुझे बता सकता है कि ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं?
0: ट्रैफिक लाइट्स 3 तरह की होती हैं, लाल, पीली और हरी।
2: अरे वाह अरहम। अच्छा, तो जो रेड लाइट होती है उसका क्या मतलब होता है?

0: अच्छा, अभी जब मैं रेडियो आ रही थी तब मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स लगी थी और उन्हें देखते ही सभी लोग रुक गए। तो मुझे बता सकता है कि ट्रैफिक लाइट्स में कितने कलर्स होते हैं?
1: ट्रैफिक लाइट्स 3 तरह की होती हैं, लाल, पीली और हरी।
0: अरे वाह हम। अच्छा, तो जो रेड लाइट होती है उसका क्या मतलब होता है?
1: लाल बत्ती का अर्थ है रुकना,
0: और ग्रीन लाइट का क्या अर्थ है?
2: हरी बत्ती का अर्थ है आगे बढ़ना।
3: अच्छा, क्या मुझे कोई बताएगा कि ट्रैफिक लाइट्स के 3 रंग सिर्फ भारत में लागू हैं या किसी और देश में भी इनका चलन है?
1: ट्रैफिक लाइट्स की ये तीनों लाइट यूनिवर्सल है, लेकिन जापान के पास ग्रीन लाइट के जगह नीली लाइट है।
3: हाँ, आपने तो सही बताया। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से क्या होगा, कोई बताएगा मुझे?
4: ट्रैफिक लाइट के नियमों का उल्लंघन करने से चालान होता है।
1: ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने या रेड लाइट जंप करने से एक्सीडेंट हो सकता है। इससे अपनी और दूसरों की जान को खतरा हो सकता है।
3: कोई और कोई सवाल पूछना चाहेगा? जैसे अभी लाल बत्ती पर गाड़ियां रुक गई, पैदल चलने वालों के लिए क्या है?
4: जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए बनाई गई विशेष जगह होती है। यह सफेद और काली धारियों से बनी होती है जो जेब्रा के शरीर जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसका उपयोग सड़क को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए किया जाता है।
3: तो अब क्या मुझे बताएगा कोई कि वाहन चालकों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का नियम क्या है?
0: मैं बताऊं?
3: बताओ।
0: वाहन चालकों को जेब्रा क्रॉसिंग पर तेजी से गाड़ी चलाने या ओवरटेक करने से बचना चाहिए।
3: सही बोले।
1: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग कब और कहाँ बनाया गया था, क्या किसी को पता है?
4: हमें तो नहीं पता।
3: मुझे भी नहीं पता।
5: भी नहीं पता।
3: चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर।
1: हाँ बताओ।
3: विश्व का पहला जेब्रा क्रॉसिंग 1951 में यूनाइटेड किंगडम के स्लो में बनाया गया था।
1: हाँ सही कहा।
3: तो क्या किसी को पता है कि जेब्रा क्रॉसिंग की पट्टियों की चौड़ाई कितनी होती है?
1: 24 इंच।
3: सही जवाब। मैंने देखा है कि स्कूल के बाहर और रोड पर कई जगह साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, क्या मुझे बताएगा कि वो कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं?
1: हाँ, रोड साइंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, रेगुलेटरी, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशनल।
0: अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि वार्निंग साइंस क्या बताते हैं?
3: ये साइंस ड्राइवरों को आने वाले खतरे, सड़क की स्थितियों या अचानक पैदा होने वाली अड़चनों के बारे में सावधान करते हैं, जैसे स्कूल जोन, स्लिपरी रोड, नैरो रोड आदि।
4: क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस साइन का मतलब क्या होता है जिसमें एक आदमी कुल्हाड़ी लेके जमीन को खोद रहा होता है?
0: क्या इसका मतलब ये है कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है?
3: सही जवाब। शौर्य, क्या आप बताना चाहोगे रेगुलेटरी साइंस का क्या मतलब होता है?
5: मुझको नहीं पता।
3: अरे कोई नहीं, क्या आरम आप बताना चाहोगे?
1: ये साइंस प्रतिबंधों को बताते हैं। इनका उल्लंघन ट्रैफिक नियमों को तोड़ना माना जा सकता है, जैसे स्पीड लिमिट, नो एंट्री, नो पार्किंग आदि।
3: आपने तो सही जवाब दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देशभक्ति की भावना जगाने वाला यह मशहूर शेर है महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। अभी 3 दिन पहले ही उनकी जयंती थी। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। 19 वर्ष की कम उम्र में उन्होंने आजादी की राह पर कदम रखा था। इसी सिलसिले में वो 1925 के विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी शामिल हुए, जिसके लिए अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया और 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। सिर्फ 30 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए बिस्मिल ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।
4: अब मैं एक उनकी मशहूर कविता सरफरोशी की तमन्ना गाकर सुनाऊंगा।
3: सुनाओ।

0: आप बताना चाहोगे कुछ?
1: हाँ,
0: बताओ।
1: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक कवि और लेखक भी थे। बिस्मिल उनका उपनाम था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की। उनके जीते जी 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। अपनी किताबों को बेचकर जो पैसा मिला उसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। बिस्मिल ने हमेशा कहा कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना ही असली जीवन है। फांसी से पहले भी उन्होंने देशभक्ति के गीत गाए। उनकी समाधि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। आज भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की कहानी हमें हिम्मत, सच्चाई और देश प्रेम का पाठ पढ़ाती है।
0: अरे वाह, आपने तो हमें काफी कुछ बताया। अब तो बहुत देर हो गई है हमें बातें करते करते, अब घर चले।
2: चलो अब चलते हैं, लेकिन अगले सप्ताह हम दोबारा मिलेंगे इसी समय।
3: तब तक के लिए बाय बाय।

0: अभी हमारे प्यारे राज दुलारे बच्चे सुन रहे थे अपना मनपसंद कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग।
1: स्वांग के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वांग श्रवण कुमार। कलाकार हैं ऋषिपाल चौहान, मनसाराम चौहान।

धर्म और सेवा के पथ पर सब कुछ दीनावार, कदम नहीं हट पाया पीछे, झेले कष्ट अपार। ज्ञानवती और भक्त शांतवन अजीव।

0: प्रेमी सज्जनों, ऋषि के आशीर्वाद से ज्ञानवती सांत्वन को एक पुत्र पैदा हो जाता है जिसका नाम श्रवण कुमार रखा जाता है। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा, श्रवण कुमार का विवाह भी कर दिया जाता है। श्रवण कुमार एक दिन राजा दशरथ के दरबार में जाता है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए होते हैं। श्रवण कुमार गुरु वशिष्ठ जी को नमन करते हुए क्या कहता है, आइए सुनते हैं और गुरु वशिष्ठ जी क्या जवाब देते हैं, किस प्रकार से भला। गुरु वशिष्ठ जी को श्रवण कुमार का प्रणाम स्वीकार हो।
1: खुश रहो बेटे।
0: ऋषिराज,
1: कहिए बेटे।
0: आज आपके पास एक छोटी सी शंका लेकर के आया हूँ।
1: मेरे पास में?
0: हाँ।
1: क्या बात है ऐसी?
0: आप सुनिए जरा।
1: कहिए।

0: वशिष्ठ जी कह देते हैं कि श्रवण, अगर तू अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराएगा तो उन्हें रोशनी वापस मिल सकती है, उनके आंखों की ज्योति वापस आ सकती है। श्रवण कुमार अपने दिल में ठान लेता है कि मैं अपने माता पिता को सारे तीर्थ करा के उन्हें ज्योति जरूर दिलाऊंगा। साथियों, उधर विद्या श्रवण कुमार की पत्नी पूछती है, और क्या कहते हैं श्रवण कुमार?
1: हे प्राणनाथ, कहिए मेरे प्राणों प्यारी विद्या,
2: आज आपके चेहरे पर यह उदासी, आप मुझसे बार बार अपनी नजर क्यों चुरा रहे हैं? तो मेरी बात सुन लीजिए प्राणनाथ।

0: श्रवण कुमार से जिद करती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ सास ससुर की सेवा करना चाहती हूँ।
1: मेरे साथ तेरा चलना ठीक नहीं होगा।
0: प्राणनाथ, अगर वो आपके माता पिता हैं, तो सास ससुर तो मेरे भी हैं।
1: बात तो सही है।
0: हाँ,
1: लेकिन कहाँ बनखंड में तू मेरे साथ में धक्के खाएगी?
0: आप मेरी बात सुन लीजिए जरा।
1: कह दे विद्या।
0: के संग मैं भी चलूंगी तुम्हारे पिया।
1: अच्छा,
0: मैं भी सेवा बराबर करूंगी पिया।
1: अच्छा,
0: मैं भी

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। अब आज की शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों के लिए उनका कार्यक्रम बाल गोपाल। सभी चुन्नू मुन्नू और बाल गोपाल का जय हिंद। चुन्नू मुन्नू, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सब जने ठीक हो, स्वस्थ हो। अब देखा ना, गर्मी का मौसम चलत बा और गर्मी ए टाइम पे बिल्कुल अपने चरम पर बा।

गर्मी से कैसे बचाव किया जाए, है ना, और कैसे अपन ख्याल रखा जाए और अपने भाई बहन का ख्याल रखा जाए, तो ये सब तो हम चर्चा करबे करब। बोला हम ही चाहत हई कि आज चूंकि जून का महीना चलत बा और गर्मी खूब पड़त बा और हाँ स्कूल की छुट्टियां भी चलत हैं, है ना, तो ऐसे में आज चूंकि एक महत्वपूर्ण दिन भी बा, वो पर भी हम आपसे चर्चा करब। और दो खास चीज़ें, पहली बात तो ये बा कि आज बा 14 जून, है ना, तो ये 14 जून जून बा ये दिन के रक्तदान दिवस के रूप में हम सभी मनावत है। अब आप ये सोचत होब कि भैया हम तो बच्चा है, हम खून कैसे दे, का हम खून दे सकी था का? तो भाई आप तो खून नहीं दे सकत है, लेकिन जब आपका उम्र 18 साल हो जाए, है ना, ओकरे बाद आप खून दे सकत है। और सबसे बड़ी बात क्या बा कि हमारे शरीर में खून का क्या काम बा, जैसे साइकिल में तेल है ना, गाड़ी में पेट्रोल, वैसे ही शरीर में खून, और खून से ही हमें ताकत मिलती है। एकरे अलावा बीमारी से लड़े के खातिर हमें शक्ति मिलती है। अब जैसे हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो उससे हमारा खून बनत है ना। लेकिन मान लो ये हो कि भाई कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए या ऑपरेशन होए या कोई बहुत बीमार हो, तो डॉक्टर कहते ना भैया कि भाई इनके शरीर में खून की कमी हो गई बा। अब वो कमी कैसे दूर हुई, है ना, तो भाई खून दे की जरूरत पड़ जाता, और जब आप खून दे था तो ओकर जान बच जाता। यानी कितनी बड़ी बात होता कि आप अपने शरीर से जब आप खून दे था केहू के तो ओकर जान बच जाए। और यही बड़ी कहा गया बाबा कि भाई रक्तदान महादान। अब देखो डॉक्टर अंकलों बतावत हैं कि भाई एक आदमी के दिए खून से 3 लोगों का जान बच सकत है ना, कमाल की बात। अब आप क्या करेंगे, आप ये सोचत होगा कि भाई हम क्या करिए करे बदे, तो भाई अपने अम्मा बाबूजी या चाचा ताऊ उनके आप बतावा, हाँ उनके यह समझावा कि भाई देखा खून देना महादान है, इसमें डरने की कोनो जरूरत नहीं बा, सुई बस चुटकी भर चुभत है और 10 मिनट में काम खत्म, और शरीर में नया खून एक दिन में बन जाता है। यानी हम सबे के याद रखे पड़े कि भाई रक्तदान महादान, और इससे बचती सबकी जान। इसलिए आज का दिन बड़े महत्व का है, रक्तदान दिवस है। तो भाई हम चूंकि आप सभी बच्चा है, लेकिन फिर भी अपने घर में अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के बीच बैठ करके इन सब बातों पर चर्चा होई के चाहिए, है ना। जब आप चर्चा करबा तो उसे कुछ जो आपसे बड़ा लोग हैं वो आपके बारे ओके बारे में बताइए, हाँ कि भाई हम जोन बा खून जब दे था तो उसे का लाभ होता, एमन डरा के बिल्कुल जरूरत नहीं बा। सबसे बड़ी बात क्या बा कि खून जोन बा जब आप दे था तो ओकरे बाद फिर कुछ भोजन कई के या कुछ पेय पदार्थ पी करके जैसा डॉक्टर सलाह दे हथिन, है ना, तो फिर ओके बाद रक्त आपका बन जाता। तो ये तो बात रही भाई रक्तदान की। अब दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई गर्मी के मौसम में आप ही बतावा कि आपका सबसे प्यारा तोहफा का हो सकत है, जो जो खाए के चाहत है कि भाई अगर वो हमें मिल जाए तो मजा आ जाए। अब देखो ना, सबसे प्यारा जो तोहफा बा वो बा फलों का राजा आम। अब फलों का राजा आम बच्चों, अब ये आप बतावे पहले हमके कि भाई आम को फलों का राजा काहे कहते हैं हम सबे, क्योंकि ये स्वाद में भी नंबर 1 और फायदे में भी नंबर 1। सबसे बड़ी बात क्या है कि आम का जो फायदा बा वो एक तो आम में पानी होता, लू से ये हमें बचावत है। कच्चे आम का पानी, कच्चे आम का पन्ना अगर हम पी ली तो दोपहर में हमें अगर हम पी करके निकल जाए तो हमें लू न लगे और चक्करों ना आवे। इकरे अलावा आम में विटामिन ए होता है, ये आँख की रोशनी तेज करता है। तो भाई खूब आम खाओ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होता ना। अब कोई चीज़ अगर आप ज़्यादा खा लेबा तो नुकसान कर दे। तो सबसे बड़ी बात क्या बा कि आम खाने से शरीर में ताकत आती है ना, और इकरे अलावा पेटों साफ होता उसे। तो इन सब बातन का आपको ध्यान रखे चाहे। और हाँ एक चीज़ और आपके हम बतावा चाहिए थे कि आम खाए के बाद तुरंत पानी नहीं पिए के, नहीं तो क्या हो जाए, पेट गड़बड़ाई जाए, और जब पेट गड़बड़ हो जाए तो फिर आपके तकलीफ होए, फिर आप डॉक्टर के पास जाब, फिर आप दवा खाब, है ना, तो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बा कि हम सभी अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखी और खाए पिए में पूरी सावधानी बरती। अब हम आपसे ये जानना चाहिए था कि

0: भाई आपको कौन सा आम पसंद बा? अब जैसे दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, चौसा होता है ना, तरह तरह के आम होते हैं। अब एमे आपके कौन से पसंद बा? भाई हमें तो दशहरी पसंद बा। अब आपके कौन से पसंद बा आप जाना, है ना। लेकिन आम फायदेमंद चीज़ बा, आम खाए से हमारा पेट सही होता है और भी तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब आम खाने से ठीक हो जाती हैं, है ना। तो गर्मी के मौसम में फलों का राजा आम हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी है और हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात रही आम के विषय में, और हमने आपसे बात की रक्तदान के विषय में, और ये बताया कि रक्तदान महादान है और इससे बचती सबकी जान है। अब देखो बच्चों, बाल गोपाल कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में नीता बहनी आई हैं, वो आपकी एक वार्ता सुनाई हैं। वार्ता के विषय बा सौर मंडल की आकर्षक घटनाएं, है ना। तो चला ये वार्ता सुन ली जाए।
1: बच्चों, क्या आपने कभी यात्रा की है? रेलगाड़ी से या बस से खिड़की से बाहर देखते हुए कितना आश्चर्यजनक लगता है ना कि हमारी धरती का कितना विस्तार है, कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म होती होगी, और इस बड़ी सी धरती के ऊपर एक उतनी ही बड़ी नीली छतरी जैसा आसमान भी है। गर्मी की रात को छत पर सोते समय टिमटिमाते तारों और चंदा मामा को देखकर तो लगता है जाने कैसी जादुई दुनिया है ये। सुबह सूरज की रोशनी से आँख खुलती है तो एक नई दुनिया दिखने लगती है। आओ बच्चों, इस जादुई सौरमंडल की आकर्षक और रहस्यमयी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ये सौरमंडल है क्या? सौर यानी सूर्य और मंडल यानी कि गोलाकार घेरा, और इस घेरे में अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। पिंड एक प्रकार के गोलाकार घने पदार्थ होते हैं जो इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन आकाशीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। तो बच्चों, सूर्य ही हमारे सौर मंडल का जनक है जो सबसे बड़ा पिंड होता है। इस प्रकार सूरज और ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इसमें धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल भी शामिल है। सूर्य सौर मंडल में स्थित एक तारा है जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। बच्चों, इसका व्यास हमारी धरती से 109 गुना अधिक है, यानी 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों का विशाल गोला। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पे पहुंचता है? बच्चों, यह कितने गर्व की बात है कि हमारे देश भारत ने एक मील का पत्थर बनाया है। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गई है, जो कि सूर्य का अवलोकन करेगी और उससे निकलने वाली विभिन्न घटनाओं की खोज भी करेगी। नासा के पास सूर्य का अवलोकन करने वाली अंतरिक्ष यान का एक बेड़ा है, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब, जो कि अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए है। कितनी आश्चर्यजनक घटना लगती है जब कभी अमावस्या पर चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्सों को ढकता है या पूर्णतया ढक देता है, जिससे क्रमशः आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना भी आपने सुना होगा। उत्तरायण का आरंभ 14 जनवरी को होता है, यह दशा 21 जून तक रहती है। इसके बाद दक्षिणायन होता है, तभी तो दिन छोटा और रातें लंबी होने लगती हैं। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध केवल 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों, बुध अपने दिन और रात के तापमान में नाटकीय परिवर्तन का अनुभव करता है। दिन में पारा तापमान 450 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो कि सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। इसी बीच रात में तापमान 0 से 180 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। है ना आश्चर्यजनक बात? अपने 4 साल के मिशन के दौरान नासा के मैसेंजर अंतरिक्षयान ने अविश्वसनीय खोजों का खुलासा किया, जैसे बुध के उत्तरी ध्रुव पर पानी की बर्फ और जमे हुए कार्बनिक यौगिकों की खोज थी, और यह भी कि ज्वालामुखी में ग्रह की सतह को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका घना वातावरण अत्यंत विषैला है और सल्फ्यूरिक एसिड बादलों से बना है। इसका तापमान 465 सेंटीग्रेड है। शुक्र

0: कभी कभी पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है क्योंकि ये आकार में समान है। इसके वायुमंडल के नीचे रडार छवियों से कई पर्वत और ज्वालामुखी दिखाई देते हैं। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। इसने नग्न आँखों से देखा जा सकता है। पृथ्वी हमारा घर यानी ग्रह, जिसे विश्व भी कहते हैं, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह एक पानी की दुनिया है जिसमें ग्रह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसकी सतह का 71% भाग जल और 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दोनों ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं? पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से समृद्ध है। पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। यह एक ठंडा रेगिस्तान जैसा ग्रह है जो आयरन ऑक्साइड की धूल से ढका हुआ है, जो ग्रह को उसका विशिष्ट लाल रंग देता है। मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसे चट्टानी है। इसमें पहाड़, घाटियां आदि हैं। वैज्ञानिक सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले इसमें नदियां और महासागर भी मौजूद थे। वैज्ञानिक यह भी सोचते हैं कि प्राचीन मंगल ग्रह पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह जीवन का समर्पण करने की स्थितियां रही होंगी।
1: चुनुमुनु, अभी आप सुनत रहें नीता श्रीवास्तव बहनी की वार्ता। विषय था सौर मंडल की आकर्षक घटनाएं। और अब चलत चलावत, एक प्यारा सा गाना हम आप सभी के सुनवावत हैं।

तो नुमनू ये गाना जो बजत रहा हम उम्मीद करते ही आपके ज़रूर पसंद आया होगा, है ना। और अब देखा घड़ी की सु इशारा करत बा कि अपने कार्यक्रम का समय समाप्त होत बा, तो आप सबसे आज्ञा ली जाए। तो सभी चुनुमनुक और बाल गोपाल का जय हिंद।

अभी ग्रामीण बच्चे अपना कार्यक्रम सुन रहे थे बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब वक्त हो चला है युवाणी कार्यक्रम का।

नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों. मेरा नाम है सुष्मिता श्रीवास्तव और लेकर मैं हाजिर हूँ आपका अपना प्यारा कार्यक्रम युववाणी. तो दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में हर बार कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बातें करते हैं जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स लाते हैं. तो बस इस संडे की जो शाम है, जो काफ़ी रिलैक्स होती है, आप लोग भी कुछ अपने चाय या कुछ भी जो आपके मनपसंद हो उसको लेके बैठिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम कई सेगमेंट्स पे बात करेंगे और आपको जानकारी भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की इम्पॉर्टेंस से. आज है दोस्तों 14 जून और ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी कि रक्तदान दिवस. तो दोस्तों, हम जानते हैं कि रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं है, इसको महादान बोला जाता है, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है. हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और ये उन लाखों लोगों को स्वैच्छिक और निशुल्क रक्तदाताओं को समर्पित है जो अपने रक्त से अनगिनत लोगों की जान बचाते हैं और या कह लें कि उन्हें नया जीवन देते हैं. बाकी दोस्तों, अगर हम बात करें ना, तो एक ये बहुत ही सेल्फलेस सर्विस है कि कोई वॉलंटियर करके ब्लड डोनेट कर रहा है बिना जाने कि उसका जो ब्लड है वो किस व्यक्ति को कब काम आ जाए. विश्व रक्तदान दिवस का उद्देश्य सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना है. रक्त की ज़रूरत हमें दुर्घटनाओं में, ऑपरेशंस में, प्रसव में, कैंसर ट्रीटमेंट में और थैलेसीमिया जैसी बीमारी जिसके बारे में हम काफ़ी हद तक देखते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी को डोनर का मिलना, ऐसी कई गंभीर बीमारियों में ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है. और दोस्तों, हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना, इसका कोई हमारे पास आर्टिफिशियल सोल्यूशन नहीं है, यानी कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है हमारे पास. इसे केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही पहुँचाया जा सकता है. इसलिए नियमित रक्तदान जीवन बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है. दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस पहली बार वर्ष 2004 में मनाया गया था. बाद में विश्व स्वास्थ्य सभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी और 14 जून का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन जो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था. अब आप सोच रहे होंगे कि कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म से हम इसे क्यों जोड़ रहे हैं. बता दे दोस्तों, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्हें एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी और इसीलिए उन्हें ये नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला था. अगर हम इस साल की यानी 2026 की वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे की थीम के बारे में डिस्कस करें, तो इस बार की जो हमारी थीम है वो है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी कैन सेव लाइव्स. और वाकई दोस्तों, अगर हम साथ मिलकर किसी ऐसे काम में जिसको अगर आप फिट हैं और आप डोनेशन कर सकते हैं, तो वाकई हमारा देश का युवा जब साथ आता है तो ऐसे बड़े चेंजेस होते हैं और हम पे ये जिम्मेदारी भी है. ये संदेश है कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है. इस वर्ष अभियान के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि स्वैच्छिक और नियमित रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्त और प्लाज्मा दान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और ये जागरूकता फैलाना, रक्तदाताओं के योगदान को सम्मान देना, जैसे हमने पहले भी बात की कि एक बहुत ही सेल्फलेस सर्विस है, सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों को मजबूत बनाना. दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वो हमारा देश का युवा वर्ग है. यदि हम स्वस्थ हैं और अगर युवा स्वस्थ है और नियमित रूप से वो रक्तदान करे, तो रक्त की कमी की जो समस्या है उसे काफ़ी हद तक हम दूर कर सकते हैं. दोस्तों, आपको जानकर ये आप लोग को पता भी होगा, या मैं बता भी दूं कि आपकी जानकारी के लिए, कि जो एक यूनिट ब्लड है ना, वो भी बहुत अहमियत रखता है. यानी कि आपका एक छोटा सा कदम किसी के परिवार की एक बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है, उनकी मुस्कान का कारण बन सकता है. जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह किसी अनजान इंसान को जीने का अवसर देता है. और जो एज ग्रुप WHO द्वारा बताई गई है, जिसके बीच में लोग डोनेशन

दे सकते हैं ब्लड का वो है 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज। रक्तदान केवल रक्त नहीं बल्कि आशा, मुस्कान और जीवन का उपहार है। दोस्तों, रक्तदान से ना जुड़ी कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिसकी वजह से शायद लोग कतराते हैं ये स्टेप लेने से। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कई बार लोगों को लगता है कि रक्तदान देने से कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो रक्त की मात्रा की ऐसा कमी नहीं आती है, और रक्तदान के थोड़ी देर बाद लोगों को आराम दिलाया जाता है और उन्हें जूसेस या पानी दिया जाता है, और उसके बाद अधिकांश लोग अपना जो सामान्य उनका जो रूटीन लाइफ है वो वापस से जारी रख सकते हैं। और एक और मिथ ये भी है कि केवल कुछ खास ब्लड ग्रुप के ही लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये एक मिथ है दोस्तों, क्योंकि सच तो ये है कि आवश्यकता होती है हर एक को। तो हर एक समूह का अगर ब्लड जो भी है जिसके पास वो डोनेट करे तो किसी ना किसी मरीज के लिए वो बेहद इम्पॉर्टेंट होगा, उसकी ज़रूरत होगी, और उसको जब समय पे ये मिल जाएगा तो वाकई कई जानें बच सकती हैं और कई परिवार के जो एक टेंशन होता है, जो उसके पीछे एक डर होता है, वो भी काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं एक गीत के साथ।

हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं अपना फोन इन यूथ प्रोग्राम हेलो युवा। मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि श्रीवास्तव। तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि आज किस चीज पे बात होने वाली है आखिरकार। वेल, आज के प्रोग्राम के लिए हम खोलेंगे अपनी और आपकी यादों का पिटारा। तो बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि स्कूल या कॉलेज टाइम याद है, तो दिल के किसी एक कोने से रिएक्शन आता है ना, उफ क्या दिन थे यार। हाँ, वही दिन जब एग्जाम्स के 2 दिन पहले रट्टा मार पढ़ाई शुरू होती थी और कैंटीन के समोसे जैसे समोसे का स्वाद तो दुनिया जहान के किसी कोने में नहीं मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात, उस समय हम सबको लगता था कि बस ये पढ़ाई खत्म हो जाए और लाइफ चिल हो जाए। और अब लगता है भाई एक दिन के लिए ये सही, कोई मुझे वापस उसी क्लासरूम में भेज दे। तो आज का शो एकदम नॉस्टैल्जिया से भरा होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर द नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस।

0: आज का सवाल सिंपल है लेकिन दिल को छू जाने वाला है। अगर आपको दोबारा अपने स्कूल या कॉलेज जाने का मौका मिल जाए तो आप क्या चीजें बदलना चाहेंगे और क्या चीजें बिल्कुल वैसी ही रखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो युवा का यादों भरा सफर और सुनते हैं पहले कॉलर की कहानी।
1: हेलो,
0: आपने फोन मिलाया है हेलो युवा में, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम साक्षी है।
0: साक्षी, हमारे प्रोग्राम में ना हर बार अलग अलग थीम्स आते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं, और आज के हमारे प्रोग्राम का ये सवाल है कि अगर आपको दोबारा मौका दिया जाए कि आप अपने स्कूल या कॉलेज डेज में वापस लौट पाए तो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप बदलना चाहेंगी और दूसरी चीज जो आप बदलना नहीं चाहेंगी, हमेशा संभाल के रखना चाहेंगी।
1: स्कूल और कॉलेज की ऐसी चीज जो मैं बदलना चाहूंगी वो है मेरे सब्जेक्ट। मैंने अपने टाइम पे बड़े ही गंदे सब्जेक्ट चूज करे थे
0: okay.
1: तो मुझे वो चेंज करने हैं। और जो चीज रखनी है वो ये है कि मेरा स्कूल मेरे घर के बहुत पास था और मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर। तो स्कूल टाइम से मैं ये खुशी में रहती थी कि मेरा घर के बड़े पास है, मैं आराम से कभी भी निकल सकती हूँ बिना किसी टेंशन के। और कॉलेज में मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा 2 घंटे के सफर में मैं खुद से मिलती थी, उन गानों को सुनती थी जो मुझे मुझसे मिला है। तो ये चीज मैं संभाल के रखना चाहूंगी और मैं बड़ा याद करती हूँ उस चीज को। काश अपने काम के लिए भी ऐसे ही मेट्रो से सफर करना पड़े क्योंकि वो बहुत चीजें सिखाता है।
0: ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो आपका स्कूल पास में था, कॉलेज दूर में था, दोनों के ही आपने बहुत अपने अलग अलग तरीके से फायदे उठाए हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो साक्षी अभी आपने हमसे कहा था कि आप मेट्रो में वो गाने सुनते थे जो आपको खुद से मिलाते थे, तो आपका कोई ऐसा गाना जो आपको सुनने का मन हो?
1: जी बिल्कुल, स्वदेश का यूं ही चला राही वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: ओके,
1: मैं मेट्रो में उसको सुना करती थी।
0: हम आपको आपका गाना सुनाते हैं।

0: हेलो
1: जी, आपने फोन मिलाया है हेलो युवा में। अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम मयंक है।
1: अच्छा, तो मयंक, आज का हमारा हेलो युवा का सवाल है कि अगर आपको अपने स्कूल डेज या कॉलेज डेज में वापस जाने का मौका मिले, जो कि हम सब चाहते हैं मुझे लगता है, तो आप कौन सी एक चीज है जो बदलना चाहेंगे और कौन सी एक चीज है जो नहीं बदलना चाहेंगे?
0: तो अगर मुझे मेरे कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में वापस जाने का मौका मिले तो जो चीज मैं बदलना चाहूंगा वो शायद ये रहे कि जिन दिनों में मैं कॉलेज या स्कूल नहीं गया, ये सोचकर कि यार आज मन नहीं कर रहा है, आज ध्यान देते हैं किसी और वजह से, मैं उस चीज को बदलना चाहूंगा। क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं चला गया होता तो हो सकता है कि मैं कितने कुछ नई चीजें और एक्सपीरियंस कर पाता। और जहाँ तक सवाल है कि क्या चीजें बदलना नहीं चाहूंगा, वो चीजें रहेंगी जिस तरह से मैंने अपने कॉलेज लाइफ के या स्कूल लाइफ के हर एस्पेक्ट को बैलेंस रखा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मेरा स्पोर्ट्स लाइफ हो, चाहे वो मेरे सोशल लाइफ हो, ये सारी जिंदगियां मेरे कॉलेज लाइफ की और स्कूल लाइफ की मैंने बहुत ही बैलेंस वे में जी, किसी भी एस्पेक्ट में मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो वो एक चीज है जो मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा।
1: ओके, कोई ऐसा आपका कॉलेज का या स्कूल का इंसिडेंट जो आप हमेशा याद करना चाहते हैं, याद करते हैं अभी भी?
0: ऐसे तो कई इंसिडेंट है, बस ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं हो, तो बस एक जो फीलिंग आपके दिल में बैठ जाती है ना, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हो किसी एक जगह पे, तो वो कोई इंसिडेंट याद नहीं आता है आपको, बस वो फीलिंग याद आती है कि यार काश वो पलम दोबारा जी पाए, तो फीलिंग मुझे हमेशा याद आती है।
1: हाँ, आपने बहुत बड़ी बात बोली है मयंक। और इसी के साथ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी कोई फरमाइश, आपको कोई गाना सुनने का मन हो तो बताइए, हम आपको बिल्कुल सुनाएंगे।
0: ऐसे तो बहुत गाने हैं, बट अगर आप दिल चाहता है गाना बजा दें तो वो मुझे बहुत पसंद है।
1: तो आपकी फरमाइश का ये गीत आपके लिए।

0: हेलो
1: जी मैम, मैंने कॉल किया है आपके प्रोग्राम में।
0: जी, आपने कॉल किया है हेलो युवा में। आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम प्रखर है।
0: अच्छा, तो प्रखर, आज हम अपने हेलो युवा कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि जैसे स्कूल के डेज होते हैं, कॉलेज के डेज होते हैं, तो इतने मेमोरेबल होते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आता है ये कि हमको लगता है कि सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं और बस स्कूल के दिन या कॉलेज के दिन में पहुंच जाएं जहाँ कोई फिक्र नहीं थी हम लोगों को। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट अगर आपको दिया जाए कि आपको बोला जाए कि अब हम आपको अपने कॉलेज या स्कूल के दिनों में वापस दोबारा जाने का चांस दे रहे हैं, तो आप कौन सी चीज़ है जो बदलना चाहेंगे?
1: मैम, मेरा कॉलेज और स्कूल का मेमोरीज मैं कुछ बदलना नहीं चाहूंगा। जो भी था बेस्ट था, जीवन का बेस्ट मोमेंट था।
0: अच्छा, आप कोई भी चीज़ बदलना नहीं चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्कूल डेज और कॉलेज डेज बहुत ही अच्छे बीते होंगे जो आपने ये बात कही। तो प्रखर, आपकी कोई एक ऐसी अच्छी मेमोरी जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड?
1: मैम, स्कूल से रिलेटेड ये है, जब हम दोस्त लोग बोर हो जाते थे या स्कूल जाने का मन नहीं करता था, हम लोग स्कूल से बस मारते, जो टाइम के साथ में बिताते थे, सबसे मेमोरेबल टाइम था।
0: अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ इतनी अच्छी बीती है। तो प्रखर, हम आपसे ये बोलेंगे कि आपको कोई ऐसा गाना हो जो सुनने का मन करे तो आप हमको बिल्कुल बताइए, हम आपको सुनाते हैं।
1: मैम, न्यूयॉर्क मूवी का गाना है जुनून, मैं उसको सुनना चाहूंगा।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत आपके लिए।

0: हेलो।
1: हेलो, आपने कौन मिलाया है हेलो युवा में? अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम है अमूल।
1: अमूल्या, तो हम आज बात कर रहे हैं अपने हेलो युवा प्रोग्राम में कि ऐसे कितने दिन होते हैं हमारे कॉलेज और स्कूल लाइफ के जो इतने ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं कि हमको लगता है कि बस कोई भी टाइम मशीन ऐसी मिल जाए कि हम उस टाइम में वापस चले जाएं। तो आज का हमारा सवाल ये है कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा मोमेंट दिया जाए कि हम आपको चांस दें कि आप दोबारा से वापस से अपने स्कूल या कॉलेज डेज में जा पाएं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आप बदलना चाहेंगी?
0: के बारे में मैं ये बदलना चाहूंगी कि मैं क्लास बंक ना चाहती हूँ। मैंने कभी क्लास बंक नहीं की है, और जब मैं बाकी लोगों की स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे लगती है।
1: तो ये तो ऐसी चीज़ है जो सबको अपनी लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है ना कि हम बाद में रिकॉल करते हैं तो मज़ा आता है सुनने में हमको।
0: हाँ, मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होती है बताने के लिए जब बाकी लोग अपनी कहानियां सुनाते।
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसी भी चीज़ होगी ना कॉलेज टाइम की जो आप बदलना नहीं चाहती होंगी, वो आपके बहुत क्लोज होगी, वो कौन सी चीज़ है?
0: कैसे तेरे दोस्त, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे कोई और दोस्त हो जो मेरे स्कूल और कॉलेज में थे। कोई दोस्त बनाना चाहूंगी चाहे जितने भी बार मुझे वापस जाने का मौका मिले।
1: तो अमूल्या, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। मुझे ऐसा लगता है जो भी दोस्त आपके आपकी ये बात सुनेंगे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका कोई ऐसी गाने की फरमाइश जो आप सुनना चाहती हैं?
0: इस
1: इश्क रिस्क।
0: तो मेरे ब्रदर की दुनिया
1: तो आपकी फरमाइश का ये गीत आपके लिए।

0: मतलब
1: अच्छा
0: कि हम स्कूल इस समय घर पे ही नहीं थे। जिस समय मतलब बच्चे स्कूल से छुट्टी होने पे घर जाते हैं या जब गर्मी की छुट्टी होती है तो बाहर घूमने जाते हैं, उस समय हम जब गर्मी की छुट्टी होती है तो घर पे जा पाते थे। तो ये चीज मतलब मुझे लगता है कि समय से पहले घर से निकलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको मैं बदलना चाहता हूँ।
1: अच्छा तो ये तो बात हो गई
0: और
1: कि आप ये बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी याद होगी जो आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो नहीं बदलना है, इसको ऐसे ही रखना है।
0: तो अगर ना बदलने की बात हो, जो मतलब मेरा सबसे खास अनुभव है वो कॉलेज के दौरान का है। जैसे अभी अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ बैठना, बात करना, वो चीजें लगती है कि मतलब कई किताबों से ज्यादा आपको सिखाती हैं वो। तो अभी जैसे कॉलेज हमारा बंद हुआ है, 2 महीने हुआ, तो अब लग रहा है कि मतलब कुछ काम ही नहीं बचा है करने को। मतलब दिन बस उठ रहे, सो रहे, तो उसमें एक एक्साइटमेंट के साथ उठते थे कि आज कॉलेज जाना है, आज क्या लंच में लाई, मतलब हमारे दोस्त है जो लंच लेके आते थे शेयर करते थे। तो वो चीजें लगता है कि ये नहीं बदलना चाहिए था, कॉलेज चलता ही रहे, तो
1: हाँ
0: ये चीजें हैं। तो वो मैं अभी इस समय भी सोचता हूँ कि ना बदलू।
1: अच्छा, तो हमारे हाथ में बस ये होता है कि वो जो यादें हैं हम उनको संजो के रखें, जो दोस्त हैं उनको अपने पास रखें और उनसे लगातार कांटेक्ट में बने रहें। तो सत्यम, कोई ऐसा गाना जो आप सुनना चाहते हो और मनपसंद हो आपका?
0: गाने तो बहुत पसंद है। अब गाना मतलब मैं जो सुनना चाह रहा हूँ, एक बालिका वधू मूवी का एक गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं, जिसको कि आरडी बर्मन जी ने धुन दी है, अमित कुमार का वो गाना है। तो अगर वो आप सुना दे तो बढ़िया।
1: तो आपकी पसंद का ये गीत आपके लिए।

0: तो दोस्तों यही तक था आज का हेलो युवा का यादों भरा सफ़र। वो स्कूल और कॉलेज के दिन, हंसी मस्ती, दोस्ती और छोटी छोटी यादें हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहती हैं। याद रखिए, जिंदगी के हर पड़ाव में नई बातें सीखने को मिलती हैं, लेकिन वही पुराने दोस्त और वो पुराने पल हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं। तो दोस्तों, अपनी यादों को संभाल कर रखिए, अपने दोस्तों को कॉल कीजिए और हर पल को दिल से जिए। अपने रिव्यूज भेजिएगा हमारी ईमेल आईडी yuvvaniald@gmail.com पर और हमारे फोन नंबर 8004926250 पर। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजलि श्रीवास्तव। सुनते रहिए हेलो युवा प्रोग्राम। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी यादों को संभाल कर रखिए। नमस्कार।
1: स्पेशल में आपने सुना।

हेलो युवा का कार्यक्रम और फ़ोन इन पर थी हमारी ही साथी अंजलि श्रीवास्तव जी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रेरणापुंज सेगमेंट में, और आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसे इंसान हैं जिनका नाम सुनते ही ना सीधे आपके दिमाग में साइंस की टेक्स्ट बुक आ जाती है। और साइंस की टेक्स्ट बुक आए तो आए, साथ ही उनके अनलिमिटेड इंटेलिजेंस की भी याद आ जाती है। तो आज के हमारे प्रेरणापुंज हैं दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म हुआ 14 मार्च 1879 को उल्म जर्मनी में।

कि फ्यूचर में साइंस की दुनिया में ऐसी डिस्कवरीज कर देगा जिसकी फाउंडेशन ही आगे के फेमस एक्सपेरिमेंट्स तय करेगी। आइंस्टीन की सबसे फेमस अचीवमेंट थी उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दोस्तों, कई बार हमें थ्योरी के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन साहब की है, ये हमें ज़रूर पता होता है। और इसी थ्योरी ने दुनिया को समझाया कि टाइम और स्पेस फिक्स नहीं होते। अगर आप बहुत फास्ट ट्रैवल करें तो टाइम अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। मतलब कि साइंस ना कभी कभी साइंस फिक्शन की तरह लगने लगती है। क्यों? और हम कैसे भूल सकते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देने वाले साइंटिस्ट जो हमारे, वो भी आइंस्टीन ही थे। ये बताता है, ये जो इक्वेशन है, ये बताता है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ईयर 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की वजह, जो उसके पीछे का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, उसकी वजह से मिला था। और इसी एक्सप्लेनेशन ने मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स और सोलर सेल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दोस्तों, 1905 में मिरेकल ईयर कहा जाता है उनका, क्योंकि ये वही साल था जब उन्होंने 4 रेवोल्यूशनरी रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। उनके काम ने मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स की अंडरस्टैंडिंग की फाउंडेशन रखी। तो वाकई दोस्तों, जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम है जिसे हम बचपन से लेके ही पहले ही सुन लेते हैं, चाहे हमने उस एक्सपेरिमेंट की ग्रेविटी समझी हो या नहीं। तो बस कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ लाइफ में हमने हमेशा जिनके बारे में पढ़ा होता है, जो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं कि आपका जिस क्षेत्र में भी इंटरेस्ट हो उसको परस्यू करें। तो दोस्तों, आगे हम थोड़ा सा और हमारे सेगमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आपके साथ क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं।

भूपेन हजारिका सेतु भारत के किन दो राज्यों को जोड़ता है? अपना जवाब आप दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर, या फिर आप अपना जो सब जवाब है वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250 पर। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी सुष्मिता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के एंड की तरफ और हर बार की तरह आज हम आपसे फिर से एक सवाल लाए हैं जो हम पूछेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले कल के सवाल का सही जवाब मैं बता देती हूं। कल का हमारा सवाल था कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। इसका सही जवाब है अंडमान्स एंड निकोबार आइलैंड्स। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल है वो मैं आपसे पूछती हूँ, और क्वेश्चन है कि भूपेन हजारिका सेतु भारत के किन दो राज्यों को जोड़ता है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ।

हमारे युवा श्रोता भी अपना युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।

0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष और कल की मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम।

6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे 6:30 से 7:20 तक, फिर 7:31 से 8:45 तक और अंत में 9:30 से खेल की समाप्ति तक।

और अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। कल रात 9:30 पर गजनों का प्रोग्राम प्रसारित होगा कहकशा। सुबह 6:05 पर शामिल होइए हमारे नियमित प्रसारित होने वाले भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में। छह बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे विचार बिंदु के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद के विचार। किसान भाइयों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम रोज की तरह 6:35 पर सुनवाया जाएगा। कल के इस कार्यक्रम में डॉक्टर मदन सेन सिंह से शैलेंद्र प्रताप की बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा कृषि वानिकी से लाभ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 6:45 पर। इसके अंतर्गत डॉक्टर नलिनी गुप्ता की वार्ता होगी दांतों में कीड़े लगने की समस्या का और उसका समाधान। सुगम संगीत के प्रोग्राम में सुबह 9:50 पर मनीषा ने रखी और शाम 7:45 पर अरुण गुलवाड़ी के स्वर में भजन और गीत सुनवाए जाएंगे। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ रोज की तरह सुबह 7 बजे प्रसारित होगा और 7:10 पर हम हाजिर होंगे फिल्मों से ली गई चुनिंदा भक्ति रचनाओं के साथ। कल के शास्त्रीय संगीत के प्रसारण में सुबह 7:30 पर पंडित संजीव अभ्यंकर, दिन में 12:15 पर कमला बोस और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित अजय पोहनकर का ख्याल गायन। दिन में 12:30 पर आपकी पसंद कार्यक्रम प्रसारित होगा और 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी नेहा मिश्रा की वार्ता कार्यस्थल पर लैंगिक समानता कितनी सफल हुई दुनिया। सुबह 10:05 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा वॉयस ऑफ प्रयागराज। 10:30 पर लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, कलाकार होंगे बचाऊ लाल यादव और उनके साथी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई फूलचंद शर्मा और साथी की गाय लोकगीत के अलावा अनूप उपाध्याय से लोकभाषा कविता पाठ सुनेंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की वार्ता डॉक्टर कुबेरनाथ राय का रचना संसार। कल रात 8:30 पर कानून और हम कार्यक्रम के तहत उत्कर्ष शुक्ला की वार्ता होगी। विषय होगा बाल श्रम, बिखरता बचपन, कानूनी प्रावधान और हमारी जिम्मेदारी। श्रोताओं, ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाली शेष और कल की मुख्य कार्यक्रमों की।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे संबित सरोमी, ये देशभक्तिपूर्ण रचना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए खोए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। अनिल मिश्रा सिकरहा थाना हंडिया प्रयागराज से हमें सूचित करते हैं कि इनके संबंधी खुशबू मिश्रा दिनांक 4 अप्रैल 2026 से सिकरहा थाना हंडिया प्रयागराज से लापता हो गई हैं। खुशबू मिश्रा की उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फुट 4 इंच, शरीर की बनावट सामान्य है। इनके विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, सुशीला देवी पत्नी अनिल मिश्रा सिकरहा थाना हंडिया प्रयागराज। एक अन्य सूचना, फूलकली पत्नी राकेश फूल मंडी थाना नैनी प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं।

जिनकी संबंधी खुशबू, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, कद लगभग 5 फुट, रंग गोरा है, चेहरा सामान्य है, ये सफेद काले रंग का छीटदार सलवार सूट और काला दुपट्टा पहने हुए हैं। इनके दाहिनी आंख के पास कटे का निशान है। खुशबू के नैनी रेलवे स्टेशन, थाना शिवकुटी, धूमनगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना है। जिस किसी भी सज्जन को खुशबू के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है, वे कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, फूलकली पत्नी राकेश, फूल मंडी, थाना नैनी, प्रयागराज। अगली सूचना, शबीना पुत्री मोहम्मद शमीम, हंडिया प्रयागराज से हमें सूचित करती हैं कि इनकी संबंधी मोहम्मद अरसलान, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, कद 4 फीट 8 इंच, ये दिनांक 19 अप्रैल 2026 से हंडिया प्रयागराज से लापता हो गए हैं। मोहम्मद अरसलान स्वस्थ हैं, चेहरा गोल है और ये नीले रंग का जीन्स पहने हुए हैं। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। मोहम्मद अरसलान के विषय में कोई भी जानकारी यदि आपको उपलब्ध होती है तो कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट करें, शबीना पुत्री मोहम्मद शमीम, वार्ड नंबर 6, पावर हाउस के पीछे, कस्बा हंडिया, थाना हंडिया, प्रयागराज। मोबाइल नंबर है 6388020813, यानी 6388020813। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोई व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचारों का, अब से थोड़ी ही देर में।

0: राजमार्ग निर्माणाय, रेल संरचना विकासाय, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक संपथ परियोजनाय, पुनर्नवीकरणाय, ऊर्जा परियोजनाय केन्द्रीय सहायता प्रदत्ता इति तया उक्तम्। केन्द्रीय श्रम आजीविका राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे वर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति देशः अग्रे सारितः। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मन्दिरे दर्शनानन्तरं सा अवदत् यत् एषा यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः द्वादश वर्षीय कार्यकाल पूर्णतायाः तथा च देशस्य दीर्घकालं निरन्तरं सेवमानस्य प्रधानमन्त्रिणः स्मरणार्थं कृतास्तीति। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री मोहन यादव अद्य सागरमंडले राज्यस्तरीय कार्यक्रमे लाडली बहना इति योजनायाः सप्तत्रिंशत्तम सहयोगांशस्य वितरणं कृतवान्। संपूर्णे राज्ये सपादैक कोट्यधिकानां महिला लाभार्थीनां वित्तकोशेषु प्रत्यक्षतया 35 अधिक 18 शत कोट्यधिक रूप्यकाणि प्रेषितानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व रक्तदात्री दिवसस्य अवसरे जनानां स्वैच्छिक रक्तदानाय आह्वानं कृतवान्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रसारिते सन्देशे तेन उक्तं यत् रक्तदानं कस्यचित् व्यक्तेः जीवन रक्षणस्य तथा नूतन जीवन प्रदानस्य सर्वाधिकं प्रभावी पावनञ्च माध्यमम् अस्ति इति। ओमान देशे भारतीय दूतावास अवदत् यत् प्रायः 14 भारतीयान् वहत् भारतीय ध्वजारोहितं यांत्रिक नौकायानं विराट वन इत्यस्मै ओमान देशस्य तटे यंत्रस्य विफलतायाः अनुभवः अभवदिति। सामाजिक प्रसार माध्यमे दूतावास सूचितवान् यत् सम्प्रति ओमान अधिकारिणां समन्वये समीपस्थैः नौकायानैः उद्धार कार्यं प्रचलति इति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, ऑस्ट्रेलिया देशः स्वस्य फीफा विश्वकप 2026 इत्यभियानस्य आरम्भं साफल्येन समारभत। स्वस्य ग्रुप डी इत्यस्य आरम्भे तुर्कीये इत्येनं देशं 2-0 पराजयत्। ह्यः स्कॉटलैंड देशः मैसाचुसेट्स नगरे ग्रुप सी इत्यस्य आरम्भे हैती देशस्य उपरि 0-1 कठिन संघर्षे विजयं प्राप्य ग्रुप सी मध्ये अग्रस्थानं प्राप्नोत्। तस्मिन्नेव समूहे अन्यत्र पञ्चवारक विजेता ब्राजील देशः न्यू जर्सी नगरे मोरक्को देशेन सह एकैकांकाभ्यां समांकीय स्थानं अवाप्नोत्। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य वर्मिंगहम नगरस्य एजवास्टन नगरे ग्रुप ए क्रीडायां चिरप्रतिद्वन्दिना पाकिस्तानेन सह स्वस्य आईसीसी महिला टी20 विश्वकप इति अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। क्रीडा सायं 7 आरप्स्यते। महिला टी20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतस्य आधिपत्यम् आसीत्। उभयपक्षयोः मध्ये क्रीडितेषु 16 स्पर्धासु 13 स्पर्धाः भारतेन विजिताः सन्ति इति वार्ताः।
1: मीडिया व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगी
2: भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
3: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Pakistan of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
4: First Ball 20.
5: कुछ मुकाबले सिर्फ खेले नहीं जाते।

आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता भारत भूषण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10:00 सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार।

सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 220। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, भाग 4, प्रस्तुति चारूबाला खरे। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए त्रिवेणी, लेखक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक सुनवाएंगे। आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार बितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 और रात्रि 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के आकर्षण है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कथा सुधा में सुनिए आभूषण भाग 3, सोशल मीडिया के वाद विवाद समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन मलइयो बेडमी पूड़ी। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4:00 सेहतनामा में सुनिए जीवन शैली और योग, योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। शाम 7:00 जयमाला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है तेरे घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8:00। कल हवा महल में सुनिए झलकी नीम हकीम, लेखक राजकुमार वाल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। छायागीत का समय रहेगा रात्रि 10:00। आले कौसर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज़ को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत एमएम करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी

प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही, वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम विशेष जयमाला। आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा। उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्य गाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अभिमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का

0: बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अंबेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है।

0: सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशालधर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
1: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8:00 FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: Which went for 6 runs. However, after that, Pakistan pulled things back. They got Shefali Verma out in the first over itself. Then Jemima.
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन इंग्लैंड में खेले जा रहे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
4: Or has seen many a season in international cricket. She is currently alongside Mandhana. That will give her a lot of confidence too. Still to come in the order are Bharti Phulmali, and at the same time we have Richa Ghosh in the order. We have Deep.
6: योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल

जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
1: इश्क से

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
2: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
3: कौन है?
2: ओ, मैं हूँ मंगरू।
3: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
2: पायला की पटवारी ताई।
3: जीते रहो मंगरू।
2: पटवारी जी घर में है क्या?
3: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राह भूले, बहू कैसी है?
2: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
3: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
2: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
3: लो वो आ गए।
2: राम राम पटवारी जी, राम राम।
4: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
2: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
4: अच्छा आओ, बैठ बैठ, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
2: जी पटवारी जी, भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
4: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
2: जी, इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
4: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर जाऊंगा।
2: ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
4: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
2: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
4: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
2: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
4: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।

0: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान लेते हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते।
0: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
1: हाँ ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई। इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
0: रूप सिंह?
1: हाँ हाँ रूप सिंह।
0: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी। अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
1: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा?
0: हाँ बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है समझो।
1: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होगे।
0: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चों को नाको चने चबवा दूंगा।
1: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
0: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
1: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
0: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा
0: हूँ। अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
1: अच्छा,
0: राम राम।
1: अच्छा राम राम, राम राम।
0: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
1: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।

0: भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई के आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूआ, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है,
3: क्यों
2: देखो
3: नहीं?
2: ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है मेरी लली। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ,
4: जाओ।
3: मंगरू वो क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए।
3: चौधरी जी? हाँ ओ, ओ, ओ, देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक है
1: मैं भी आता हूँ।
5: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी।
5: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, पता चला आप
5: मेरी रकम दे रहे हो ना।
3: जी, जी वो...
5: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
3: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
5: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
3: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
5: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवा आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए, और अब तुम्हारी बच्ची।
3: ओ चौधरी जी मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक।

0: मैं आपकी पीप पाई चुका दूंगा। धर्म से, धर्म से।
1: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
0: चौधरी जी, मालिक मालिक,
1: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला
0: दूंगा। नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, कुछ भी दया कीजिए, दया कीजिए।
1: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। पटवारी जी, पटवारी जी।
2: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
1: जी 3,000।
2: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
1: जी आप?
2: हाँ हाँ, मैं मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
1: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की।
2: अच्छा भैया, जय राम जी की।
0: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
2: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
2: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
2: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: वो क्या पटवारी जी है?
2: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
0: पर गलती उसी की पटवारी जी।
2: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
0: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
2: देखो,
0: क्या करूँ?
2: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
0: लेकिन वो
2: लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है। देखो, तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
0: ठीक, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी। और भगवान जानता है, जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
2: कौन से रुपए भाई?
0: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
2: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
0: काहे?
2: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
0: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
2: अच्छा, ये लो मंगरू।
0: ये क्या कागज?
2: हाँ,
0: ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
2: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर, जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
0: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
2: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
0: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
2: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
0: अच्छा, वो किस तरह?
2: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
0: अच्छा।
2: हाँ, अब देखो, तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
0: अच्छा,
2: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
0: 11,000?
2: हाँ भाई,
0: सच सच कह रहे पटवारी जी?
2: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। हाँ। और रुपया मिल जाने के बाद। हाँ,
0: अरे सबसे पहले तुम्हें

0: चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा और
1: लेकिन अब फजूल खर्च मत करना।
0: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। हाँ, जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
1: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से चलिए।
0: आ गए पंडित जी, चलिए आइए पटवारी जी, आइए आइए,
1: चलो चलो चलो।

कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे।

0: इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्ष

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए।

0: इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice, focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relations.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर, ख़ारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बेरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग

0: दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विज़न के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नज़रिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखो ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: द वर्ल्ड सीक्स ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर्स।
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: एंड अ स्केल दैट फ्यू कैन मैच।
0: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वज़ीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकत दारी को मुस्तहकम करें। वजीर आजम मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने

0: टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में एनडीए हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निज़ाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ रابطہ है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबायसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवंड पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपये माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उथनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स

0: में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलिस डेस एक्सपोजिशन में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। श्रोताओं, अब हम आपको सुनाने जा रही हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जा रहे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: Again has the ball in her hand, the only successful bowler for India so far. She begins the 7th over, delivers this one from over the wicket on a drivable length, and in a very measured manner Muneeba Ali gets onto the front foot, square drives it towards the fielder at deep cover, who runs to her right and then cleans it up. In the drinks break we saw animated conversation from India's bowling coach Avishkar Salvi, who was on the park having a conversation in the team huddle, and we hope that the words of wisdom that he gave would work, and we will see its effects soon. Deepti Sharma meanwhile delivers this one from around the wicket to the right hander, and Aisha Zafar nudges the ball back to the bowler. 53 for 1 after 6.2.
3: 53 एक विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से अराउंड द विकेट, वहां पर दीप्ति शर्मा और गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन वहां पर फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, कोई कोताही नहीं, बहुत ही सफाई के साथ उस कैच को मुकम्मल कर लिया। और यहां पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता हुआ, आयशा जफर, जिनसे काफी उम्मीदें पाकिस्तान की टीम को निश्चित रूप से रही होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, शतक लगाया था, लेकिन यहां पर दीप्ति शर्मा ने उन्हें वापस पवेलियन चलता

0: 64 runs in a Group A cap in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 11:10 और 17 सेकंड हुए हैं। अब आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।